अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

धाम के श्री सरयू महारानी के जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के समस्त पूर्वाचार्यों के सर्व संत वैष्णव भगवान के सत्य सनातन।

इंद्र जी की जय, श्री अयोध्या राम जी लला जी की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी की जय, श्री उमापति महादेव जी की जय, श्री रमापति रामचंद्र जी की जय, श्री वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय श्री सीताराम। नमामि।

आर्थी भेष धरे अवधूत, राम नाम की गर्जना भाग जाए दूत। श्री सीताराम नाम महाराज की, श्री राम लला भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

0: ये आकाशवाणी, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब हम आपको लाल किला लिए चलते हैं, जहाँ से आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सजीव प्रसारण सुन सकेंगे। विवरण दे रही हैं श्री जैनेन्द्र सिंह, सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
1: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण ले, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
4: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
5: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
4: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: आइए लाल किला चलें।
3: वंदे मातरम। स्वतंत्र भारत देश के 79 वर्षों की गौरवशाली यात्रा और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले भारत भूमि के वीरों और वीरांगनाओं द्वारा किए गए बलिदान का स्मरणोत्सव। श्रोताओं, ये स्वतंत्रता दिवस समारोह जिनके अद्वितीय बलिदान का प्रतिफल है ये दिवस। नमन ऐसे लाखों ज्ञात अज्ञात सेनानियों को, नमन राष्ट्र नायकों और राष्ट्र निर्माताओं को जिनके दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सका है।

0: और पूरे विश्व में भारत की पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ी है, ऐसे राष्ट्र नायकों को भी नमन है आज के इस अवसर पर। गौरव के इन पलों में श्रोताओं, आप सभी को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। दिल्ली स्थित लाल किले के प्राचीर से मैं जैनेन्द्र अपने साथी कमेंटेटर्स नीलम मलकानिया, देवेंद्र त्रिपाठी और आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ आप सभी का इस विशेष प्रसारण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ।
1: वंदे मातरम। लाल किले की इस ऐतिहासिक प्राचीर से आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2026 की इस सुनहरी सुबह भारत के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रही है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि आज पूरे गर्व और उल्लास के साथ अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रही है। कोटि कोटि कंठ आज वंदे मातरम, जय हिंद और भारत माता की जय का उद्गार कर रहे हैं। देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और उत्साह के रंग में रंगे हुए भारतीय और भारतवंशी देश विदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। साथियों, आप जानते ही हैं कि मुख्य आयोजन यहां लाल किले पर हो रहा है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए प्राचीर पर बने ध्वज स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। आकाशवाणी की तकनीकी और कार्यक्रम टीम यहां से आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाने के लिए तैयार है। आज तो किले की छटा ही निराली है, जैसे ये स्वयं पर इठलाता हो कि यहीं से हर वर्ष हमारे इस राष्ट्रीय पर्व ने देश दुनिया को एक नई राह दिखलाई है। चहुं ओर भक्ति भाव और उत्साह का भाव परिलक्षित हो रहा है। किले की विशाल और शक्तिशाली दीवारें रंग बिरंगे पुष्पों और पताकाओं से सजाई गई है। स्वतंत्रता दिवस की बधाई वाले हो होर्डिंग्स हैं, बैनर हैं, पोस्टर्स लगे हैं तो सुरुचिपूर्ण पुष्प सज्जा भी की गई है। इस बार के आयोजन की थीम है वंदे मातरम। हमारे इस राष्ट्रीय गीत के 150 गौरवशाली वर्षों को याद करते हुए आज वंदे मातरम की गूंज यहां बार बार सुनाई दे रही है। ज्ञान पथ के सामने किले की विशाल दीवार पर ताजे पुष्पों से वंदे मातरम लिखा गया है। प्रेरणादायी संवर्धन ये है कि पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी गूंजेगा। किले की बाहरी दीवार पर लगे कटआउट्स परमाणु और अंतरिक्ष तकनीक में भारत की प्रगति को दर्शा रहे हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, मातृभूमि का वंदन करते हुए, नमन करते हुए, मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर अनेक प्रतीक चिन्ह हैं। हम आपको बताएं कि लाल किले की भव्य प्राचीर पर दोनों ओर दो बड़े बुर्ज हैं, इन्हीं से सटा हुआ हमारा कमेंट्री बूथ है। प्राचीर के ठीक बीच में कुछ ऊंचाई पर ध्वज स्थल है जो हमारे दाहिनी ओर है और इस समय ताजे फूलों से सजा हुआ है। ध्वज दंड को भी फूलों की लड़ियों से सजाया गया है। खुशनुमा मौसम में सुबह की मध्यम बहती मंद बयार के साथ ताजे फूलों की गंध हमारी उत्सव धर्मिता में शामिल हो रही है। आज वैसे भी तीज है, आप सभी को तीज पर्व की भी शुभकामनाएं। और तीज को माना जाता है बहुत ही शुभ अवसर, क्योंकि त्योहारों की शुरुआत इससे होती है। ऐसे में तीज के अवसर पर जब हमारा राष्ट्रीय पर्व है तो हमारे राष्ट्रीय पर्व ने अनेक पर्वों की गरिमा साथ ही बढ़ा दी है। ध्वज स्थल के दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। लाल रंग की कुर्सियां करीने से सजी हुई है और उन पर आमंत्रित अतिथि गणों के नाम भी लिखे हैं। दाहिनी ओर की दर्शक दीर्घा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं तथा पद्म पुरस्कार विजेता अन्य अतिथि हैं। और बाईं ओर की जो दर्शक दीर्घा है उसमें केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति है। हम आपको बताएं कि यहां से हम देख सकते हैं उपस्थिति है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की, श्री पीयूष गोयल हैं, श्री नितिन नवीन यहाँ से हम देख सकते हैं, श्री हरदीप सिंह जी की उपस्थिति है, श्री मनसुख मांडविया जी हैं, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, डॉक्टर जयशंकर उपस्थित हैं, श्री गिरिराज सिंह जी हैं, श्री नितिन गडकरी जी हैं, श्री अश्वनवी वैष्णव जी हैं, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू जी की भी गरिमा में उपस्थिति यहाँ पर है। वर्दी पहने सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति है तो आकर्षक परिधानों में उल्लासित बच्चे भी हमें दिखाई पढ़ रहे हैं यहाँ से।
0: माननीय प्रधानमंत्री महोदय कुछ ही देर में यहाँ लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और जब वे प्राचीर के ऊपर बने ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रगीत, पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब स्वतंत्रता दिवस के समारोह में राष्ट्रीय गीत की धुन और स्वर यहां पर गूंजेगा। राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। यहां आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय राजघाट पहुंचकर वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद यहाँ के लिए वो प्रस्थान करेंगे। लाल किले के ये प्राचीर और ये पूरा परिदृश्य अद्भुत है। इस समय ईश्वर की कृपा भी है क्योंकि मौसम बहुत

खुशनुमा है, आसमान घने बादलों से ढका हुआ है, इसलिए धूप की रश्मियां जो हैं वो धरती तक नहीं पहुंच पा रही हैं और लोग बहुत ही सुखद वातावरण में यहाँ बैठे हुए हैं। लगभग 27 डिग्री का यहाँ तापमान हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लगभग इतना ही यहाँ पर तापमान है। और पक्षियों के कलरों के साथ, हल्की हल्की मंद बयार के साथ जो पताकाएं लगी हैं वो लहरा रही हैं हवा के साथ, हमारे राष्ट्रीय ध्वज जहां जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहां तक लगे हुए हैं वो

0: समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है उसे भारत कहते हैं और हम स्वयं को भारतीय कहते हैं। मंच की सज्जा को आपने जाना, अनुभव किया होगा, अपने अपने कल्पना में उसे सजीव भी किया होगा। आपने मंच के ठीक सामने जो ज्ञानपथ का क्षेत्र है वहाँ सबसे पहले हमारी दृष्टि जहाँ जाती है वो है राष्ट्रीय सलामी गारद जो वहाँ पर उपस्थित है ठीक सामने। इसमें सेना के तीनों अंगों और दिल्ली पुलिस की टुकड़ियाँ शामिल हैं। प्रत्येक टुकड़ी में 32 सैनिक हैं और एक अधिकारी उसमें शामिल हैं। राष्ट्रीय सलामी गारद का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर लोकेंद्र सिंह। सेना की अपनी यूनिफॉर्म में वर्दी में सजे धजे गर्व से सीना तरा हुआ। सेना की टुकड़ी की कमान मेजर विकास यादव के हाथों में है जबकि लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष नौसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं अपने सफेद यूनिफॉर्म में और पीकॉक के साथ। वायुसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर उमेश जी और एडिशनल DCP विकास मीणा दिल्ली की टुकड़ी दिल्ली पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। और हमारे ठीक सामने उस राष्ट्रीय सलामी गारद के दाहिनी हिस्से में वहां पर बैंड दल उपस्थित है जो राष्ट्रीय सलामी के समय राष्ट्रीय धुन बजाएगा और उसके पहले राष्ट्रगीत यहां पर बजाएगा। लेकिन उनके पीछे भी एक ऊर्जा का अनुभव अद्भुत दृश्य हम देख पा रहे हैं श्रोताओं, क्योंकि ये इस बार का आयोजन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से प्रदर्शित कर रहा है जिसको हम यहाँ के कण कण में, यहाँ के पूरे वायुमंडल में हम उसको महसूस कर सकते हैं, यहाँ के वातावरण में महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ वंदे मातरम की गूंज यहाँ पर हम सबको उत्कंठा से प्रतीक्षा है उस क्षण की जब पहली बार यहाँ से उसे बजाया जाएगा और गाया जाएगा, उसके साथ साथ बड़ी संख्या में युवा शक्ति यहाँ पर एक नई ऊर्जा का प्रतिबिंब लेकर उपस्थित है। और इसमें सामने जो दृश्य हम देख पा रहे हैं ज्ञानपथ पर, वहां लगभग 2500 की संख्या ऐसे विद्यार्थियों की है जो NCC से संबंधित रखते हैं, NCC के तीनों विंग से संबंधित रखते हैं। और उसके साथ साथ हमारे माय भारत वॉलंटियर स्वयंसेवक भी इसमें शामिल हैं और इन्होंने जो अधिसंख्य हैं, बहुसंख्यक हैं, उसमें उन्होंने सफेद रंग की वेशभूषा पहन रखी है ज्यादातर जिनकी संख्या है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा रंग है जो हमारे केसरिया रंग यानी हमारे बलिदान का भी प्रतीक है और उसी रंग के साथ केसरिया रंगों की वेशभूषा के साथ उन्होंने यहां रचा है वंदे मातरम। क्योंकि वंदे मातरम इस बार, इस पहली बार इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में गूंजेगा
1: जी। उत्तर से लेके दक्षिणी लकीर तक, पूर्वा से लेके पश्चिमी समीर तक, सागरों से लेके नदियों के तीर तक, पर्वतों से लेके घाटियों के तीर तक, आत्मा से लेके नश्वर शरीर तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। देश की संचयी शक्ति जो देश का इतिहास अपने आप में समेटे है, एक अभिवादन भी है, सम्मान भी है, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पहचान भी है। ये दो शब्द जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में देशवासियों को एकजुट किया और आजाद भारत को भी सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हम आपको बताएं साथियों, वंदे मातरम जो यहां से हम देख रहे हैं, NCC कैडेट्स ने जो मानव संरचना में लिखा है, बेहद प्रेरक, बेहद खूबसूरत यहां से जान पड़ रहा है। और साथ ही जो अन्य यहां पर बच्चे हैं वो उत्सुकता से एक टक इन बच्चों को निहार रहे हैं। आज के आयोजन के लिए राजधानी में परिवहन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। वैकल्पिक मार्गों के बारे में काफी पहले से ही जानकारी साझा की गई है। कई दिन पहले से ही सभी प्रमुख चौक चौराहों पर, महत्वपूर्ण भवनों पर रंग बिरंगी प्रकाश सज्जा की गई है। साथ ही जन समुदाय की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। राजधानी को गति देने वाली मेट्रो भी हमारे इस राष्ट्रीय पर्व का आज है अपनी सेवा देते हुए आज सुबह 4 बजे से सरपट दौड़ रही है। यहां आयोजन स्थल के आसपास क्लॉक रूम, व्हीलचेयर और पेयजल की व्यवस्था की गई है। लगभग 23,000 आगंतुकों को इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। अपनी सजीली सैन्य वर्दी पहने अधिकारी हैं, आकर्षक परिधानों में यहां पर सामान्य जन है। NCC कैडेट्स हैं, माय भारत स्वयं सेवकों ने जो संरचना बनाई है, हमने आपको बताया कि बेहद यहां पर बनाई है हमने आपको बताया कि बेहद यहाँ पर आकर्षक है। सीढ़ीदार व्यवस्था में इनके दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। एक ओर विद्यालय के छात्र छात्राएं अपने शिक्षकों के साथ बैठे हैं, अन्य आगंतुक हैं, तो दूसरी ओर भी सीढ़ीदार व्यवस्था में कुर्सियां करीने से लगाई गई हैं। हल्के जामुनी रंग की दरी पर, हरे रंग की कुर्सियों पर आगंतुक आज के अवसर के लिए विशेष तौर से हमारे तिरंगे के जो तीन प्रधान रंग है उनके परिधान पहने हुए हैं। आज का ये आयोजन अलग अलग क्षेत्रों में हमारे युवाओं की उपलब्धियों को भी उजागर कर रहा है। इंटरनेशनल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ओलंपियाड में मेडल विजेता युवाओं को भी आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। नेशनल इनोवेशन कार्यक्रम से जुड़े युवा हैं, PM

0: इंटर्नशिप योजना के छात्र हैं। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चयनित बेहतरीन स्टार्टअप के तहत चुने गए श्रेष्ठ प्रतिभागी हैं। माई भारत के स्वयंसेवक हैं। दिल्ली के विभिन्न विद्यालयों में हुई परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थी भी इस समय यहाँ बैठे हैं। इस अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली में रहने वाले 1500 से ज्यादा ऐसे लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जो इस समय अपनी पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ बैठे हैं और लघु भारत का दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक खास बात ये है कि हमारी जल शक्ति का सम्मान रखते हुए इस बार जो प्रांगण घेरे हैं, एनक्लोजर्स हैं, इनके नाम प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए हैं। भीमताल, चंद्रताल, दूध सागर, रोबिंद्र शोबोर, रुद्र सागर, चिलिका, हाफलोंग नाम रखे गए हैं। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वो भारत जो समृद्ध है, जो संपन्न है, साथ ही जो संकल्पित है आगे बढ़ने के लिए और साथ ही विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लिए, जिसमें हर उम्र का देशवासी अपनी ओर से योगदान करने के लिए तैयार है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये स्वतंत्रता जिसने पराधीन भारत में जब देशवासियों को पुकारा तो अपनी जान की परवाह न करते हुए देशवासी जुट गए कि भारत माँ को हमें परतंत्रता की बेड़ियों से आज़ाद करवाना है। और अब यही स्वतंत्रता हमें ये प्रेरणा देती है कि लगातार आगे बढ़ते हुए हम जहाँ हैं, जो कर सकते हैं, देश प्रेम मन में रखे हुए, संजोए हुए, देश को विकसित करने की ओर लगातार बढ़े, अपना योगदान करें।
1: निश्चित रूप से, और इसीलिए भारत के भविष्य को लेकर जो संकल्पना है, विजन है, विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस गति से आगे बढ़ते हुए वर्ष 2047 तक यानी 100 वर्षों के स्वतंत्र भारत की यात्रा को पूरा करते हुए एक विकसित भारत के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, उसका भी यहाँ दृश्य हमें साफ नजर आता है। यहाँ लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री महोदय का आगमन कुछ ही पलों में होने जा रहा है। वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और साथ ही रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह वहां पर उपस्थित हैं। साथ ही दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी वहां पर उपस्थित हैं, जो वहां प्रधानमंत्री महोदय की अगवानी करेंगे और वहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सलामी दी जाएगी। और उसके बाद सलामी गारद का वो निरीक्षण करने के बाद लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और आगे का जो कार्यक्रम है वो यहां आरंभ होगा। इस रूप में बिगुल वादन के साथ इस बात का संकेत मिल चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के वाहनों का काफिला यहां प्रवेश कर रहा है। आइए आपको आगे के विवरण के लिए सीधे लिए चलते हैं देवेंद्र के पास, जो लाहौरी गेट पर उपस्थित है।
2: धन्यवाद जैनेन्द्र। मैं देवेंद्र त्रिपाठी आप सभी श्रोताओं का लाल किले के ऐतिहासिक प्रांगण में लाहौरी गेट से स्वागत करता हूं। इस द्वार के समक्ष होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी आपको साझा करूंगा, जहां माननीय प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस की संयुक्त सलामी दी जाएगी। प्रधानमंत्री सम्मान गारद का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ऐतिहासिक 13वीं बार ध्वज फहराएंगे और देश और दुनिया को संबोधित करेंगे। आजादी का ये दिन 15 अगस्त भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित, ना जाने कितने रक्तों से रंजित। ये स्वाधीनता का ही उत्सव नहीं, ये अवसर है माँ भारती के वीर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भी, उन्हें ये विश्वास दिलाने का कि आपके बलिदानों का ऋण हम माँ भारती की सेवा करके चुकाएंगे। ये वीर शहीदों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है, जिनके त्याग और बलिदान से ये प्रतिफल आज हमें मिला। श्रोताओं, माननीय प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला प्रांगण में प्रवेश कर रहा है और यहाँ का पूरा परिदृश्य नई ऊर्जा से ओतप्रोत। माँ भारती का वंदन और वीर बलिदानियों का अभिनंदन करने के इस पावन आयोजन में उत्साह, उल्लास और श्रद्धा का भाव। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन लाहौरी गेट के समक्ष सलामी मंच पर हो रहा है, जहां उनकी अगवानी के लिए उपस्थित हैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। श्रोताओं, सलामी मंच के सामने तीनों सेनाएं और दिल्ली पुलिस तथा नौसेना बैंड वादकों का दस्ता, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सलामी देने के लिए सभी मुस्तैद। दस्तों के पृष्ठभाग में लगा है तीन रंगों में बैनर, जिस पर झलक है विकसित भारत और विविध भारत की। अंतर सेना सम्मान गारद का जिम्मा इस बार थल सेना को दिया गया है, कमान है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों और सलामी मंच के दोनों ओर खड़े हैं कैप्टन बीके मेहता और प्रथम नेगी। प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला पहुंचा है सलामी मंच के पास और माननीय प्रधानमंत्री अपने वाहन से उतरते हुए लाल रंग का साफा और ब्राउन यानी भूरे रंग की सदरी, सफेद रंग का कुर्ता पैजामा माननीय प्रधानमंत्री श्री राजनाथ सिंह, श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा सचिव का अभिवादन स्वीकार करते हुए और रक्षा सचिव जीओसी दिल्ली एरिया राजेश सेठी से परिचय कराते हुए अब माननीय प्रधानमंत्री पहुंच रहे सलामी मंच की ओर, जहां उन्हें अंतर सेना पुलिस सम्मान गारद सलामी देगी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों में। संयुक्त कमांडर के नेतृत्व में टुकड़ों की सलामी। भारतीय सैन्य बलों के पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन लाल किले की इस प्रांगण में। अब संयुक्त कमांडर सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री जी से सम्मानगर टुकड़ियों का निरीक्षण करने के लिए आग्रहपूर्ण अनुमति लेंगे। सधे हुए कदमों से, हाथों में तलवार लिए और जोश भारतीय सैन्य बलों का जो झलक रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सहमति दी और सलामी मंच से नीचे उतरते हुए मंच के बाईं ओर से बिछा है रेड कारपेट, जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री के स्वागत में अपनी लालिमा से इस स्थल को और गौरव प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री के दाईं ओर दो कदम पीछे, हाथों में तलवार और भारतीय सैन्य बलों का शौर्य लिए चल रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं नौसेना बैंड दस्ते के पास। बैंड मास्टर डी सेल्वम के नेतृत्व में नौसेना का ये बैंड आनंद लोके की धुन बजाएगा, जिसे तैयार किया बैंड मास्टर जे रोड्रिक्स ने, और बच्चों की आवाजें आप सुन पा रहे हैं। यहाँ मौजूद उपस्थित बच्चे माननीय प्रधानमंत्री का अपनी आवाज के साथ स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री के अब का आगमन हुआ है थल सेना की टुकड़ी के पास। 25 जवान नेतृत्व मेजर आदित्य शर्मा के हाथों में। प्रधानमंत्री के समक्ष पूरी नम्रता लेकिन अभिमान का अभामंडल देश के वीर सैनिकों के मुख पर, जो विश्वास दिलाते हुए मां भारती की रक्षा में सदैव तत्पर। नौसेना की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर अरुण कलमाड़ी के हाथों में तीनों सेनाएं देशवासियों को विश्वास दिलाती हुई, हम है भारत के प्रहरी, हम है मां भारती के सेवक और रक्षक। और अब प्रधानमंत्री वायुसेना के दस्ते के समक्ष 24 जवानों की टुकड़ी भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व 80वें स्वतंत्रता दिवस पर करती हुई कमान स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार के हाथों में। दिल्ली पुलिस का नेतृत्व एडिशनल डीसीपी विनीत कुमार कर रहे हैं। सभी ने अपने भावों से माननीय प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाया मां भारती के रक्षक सदैव तत्पर। और अब लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह परेड कमांडर माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करते हुए, और अब लाहौरी गेट से माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं समारोह स्थल लाल किले की प्राचीर की ओर, जो 1947 से हर वर्ष केंद्र बना है भारत के स्वाधीनता उत्सव का। प्रधानमंत्री के साथ हैं जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। लाहौरी गेट, लाल किले की प्राचीर और दोनों गुंबद साक्षी हैं भारत के स्वाधीन होने, विकासशील से विकसित बनने के अमृतकाल के। स्वाधीन 79 वर्षों में भारत ने अपने विकास की लंबी यात्रा तय की है श्रोताओं। 2026 का भारत विश्व पटल पर भी अपनी छाप छोड़ रहा है। भारत के विचार दुनिया के लिए मायने रखते हैं, जो समाधानों के लिए आज भारत की ओर देखते हैं, क्योंकि भारत की नीतियों के मूल में है वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श और भारत का उत्कर्ष। विकास भी और विरासत भी भारत की विचारधारा, और भारत, हमारा प्यारा भारत बढ़ रहा आगे। एक तरफ अपने हृदय में संजो रहा अपने पूर्वजों के बलिदानों को, तो दूसरी ओर माथे पर चंदन की तरह बिठा रहा युवाओं को, जो भविष्य के भारत की गाथा लिखने को तत्पर। एक ओर इंडियन नॉलेज सिस्टम का सम्मान, दूसरी ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घोष भी। 80वां स्वाधीनता दिवस अवसर है अपने पूर्वजों को प्रणाम करने का, उनके प्रति श्रद्धावनत होने का, जिन्होंने तन मन और धन से मां भारती की सेवा की। 21वीं सदी का सबल भारत वीर बलिदानियों का ऋणी है, जिनके समर्पण और बलिदान से हमें आज का यह सौभाग्य मिला। और श्रोताओं, मुख्य समारोह स्थल की ओर चलते हैं, लाल किले की प्राचीर पर, जहां 150 वर्ष वंदे मातरम के पूर्ण होने के अवसर पर इस बार पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम की धुन आप सुनेंगे। उसके बाद ध्वज फहराया जाएगा और फिर राष्ट्रगान होगा और प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। और विवरण के लिए हम लाल किले की प्राचीर कमेंट्री बूथ पर लिए चलते हैं अपने साथी कमेंटेटर नीलम और जैनेन्द्र के पास।
0: धन्यवाद देवेंद्र। साथियों, कुछ ही देर में ये पावन और ऐतिहासिक क्षण आएगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर ध्वज फहराने के लिए लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल की ओर आएंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे, तब भारतीय सेना का बैंड वंदे मातरम की धुन बजाएगा। अपने राष्ट्रगीत के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होंगे। प्रधानमंत्री जी भारत माँ की अस्मिता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को जब फहराएंगे, तब राष्ट्रगान होगा, साथ ही तिरंगे को सलामी भी दी जाएगी। आर्मी सिग्नल कोर से कैप्टन ऋतिका खरेटा माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग करेंगी ध्वज फहराने में।

0: 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और साथ ही भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर आकाश से झंडा वंदन करते हुए पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वज फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए कमान अधिकारी विंग कमांडर ऋषिकांत के साथ को पायलट स्क्वाड्रन लीडर मोहित सिंह राष्ट्रीय ध्वज वहन किए हुए आएंगे। दूसरा हेलीकॉप्टर वंदे मातरम का ध्वज लिए हुए आगे बढ़ेगा और स्क्वाड्रन लीडर पुनीत यादव पुष्प वर्षा करेंगे, इस तरह से अपनी ओर से झंडा वंदन भी करेंगे और साथ ही यहां बैठे उत्साहित देशवासियों पर भी पंखुड़ियां जब गिरेंगी तो वो दृश्य देखने लायक होता है। बच्चे बेहद उत्साहित हो जाते हैं इसे देखते हुए और आप जानते ही हैं कि अब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं। इस तरह से अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को, राष्ट्र को प्रेरणा देने वाले इन गीतों को हम सम्मान देते हैं। मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, भगत सिंह की फांसी, मैं बापू की अंगड़ाई हूँ, हूँ जलियांवाला बाग भी मैं, पानीपत का पानी हूँ, ऊधम की पिस्तौल भी मैं, झांसी वाली रानी हूँ, रंग दे बसंती चोला, मैं गुरु गोविंद सिंह का बलिदान हूँ, चेतक की हुंकार में ही मैं राणा प्रताप की शान हूँ, मैं छुपा बोस किनारों में, मैं जंग लगी तलवारों में, मैं इनकलाब की बोली हूँ, आजाद की आखिरी गोली हूँ, मैं भारत का हर भाव चंगा हूँ, मैं सबका पूज्य तिरंगा हूँ। इसी तिरंगे के सम्मान में पूरा आयोजन यहाँ का हो रहा है और यहाँ पर जो सलामी गारद है वो भी जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा उस समय राष्ट्रीय सलामी देगी
1: निश्चित रूप से और सभी को उस पल की प्रतीक्षा है। श्रोताओं, लाल किले के प्राचीर से जब हमारी दृष्टि सामने इस पूरे क्षेत्र की तरफ जाती है, चांदनी चौक की तरफ जाती है, तो अनायास ही बहुत सारे ऐसे इतिहास के पन्ने अपने आप सजीव होने लगते हैं जो हमारे पूरे राष्ट्र के लिए, देश के लिए संघर्ष का एक बहुत कठिन दौर रहा है जिससे देश गुजरा है। धर्मांधता और बलपूर्वक धर्मांतरण की वो विभत्स और क्रूर घटनाएं दृश्य आंखों के सामने सजीव होने लगते हैं। आपको मालूम ही है लाल किले के प्राचीर के सामने चांदनी चौक में ही स्थित है गुरुद्वारा सीसगंज। सन 1675 में 24 नवंबर की वो तारीख थी जब यहीं हमारे नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। गुरु साहब ने बलिदान से पहले, गुरु साहब के बलिदान से पहले उनके शिष्य भाई मतीदास, भाई दयाला और भाई सतीदास के ऊपर भी बर्बरता भला कौन भूल सकता है। देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में भी ये दिल्ली स्थित चांदनी चौक एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक केंद्र रहा है। 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए ब्रिटिश सेना ने यहाँ की मुख्य सड़कों और कोतवाली के आसपास के क्षेत्रों में अपना दमन चक्र चलाया। क्रांतिकारियों को खुलेआम फांसी दी गई। 1857 में आपको याद होगा ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाले जिन्हें दिल्ली का आयरन वॉल कहा जाता था, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 में 32 साल की मात्र उनकी उम्र थी तब उनको इसी चांदनी चौक में फांसी पर लटकाया गया था खुले में। 23 दिसंबर 1912 को जब ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली को राजधानी बनाने के उपलक्ष्य में इसी चांदनी चौक से होकर शाही जुलूस निकाल रहा था तब यहां घंटाघर के पास क्रांतिकारियों ने उस पर बम फेंका और उस हमले की योजना राजबिहारी बोस ने बनाई थी। उसमें मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद जी और बसंत कुमार विश्वास जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। बाद में बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई थी जबकि राजबिहारी बोस वेश बदलकर देश से बाहर निकल गए और जापान पहुंचकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की और उसके आगे का इतिहास आप सबको विदित है। सन 1915 से 1934 के बीच महात्मा गांधी ने चांदनी चौक में कई ऐतिहासिक बैठकें की थी। यहाँ की मारवाड़ी पब्लिक लाइब्रेरी हो, गांधी मैदान हो, ये सब क्रांतिकारियों और देशभक्तों की बैठकों का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। अंग्रेजों के दमनकारी कानून रॉलट एक्ट को लेकर जब देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तब 1919 में ही स्वामी श्रद्धानंद जी ने चांदनी चौक के घंटाघर पर पुलिस की संगीनों के सामने खड़े होकर निडरता से रॉलट एक्ट का विरोध किया था। कोतवाली के सामने का जो क्षेत्र है इसी चांदनी चौक की एक गली में क्रांतिवीर स्वतंत्रता संग्राम के पर्चे और बुलेटिन चुपके चुपके छापा करते थे और पूरे शहर में बांटकर स्वतंत्रता की अलख जगाया करते थे। यहाँ चाहे वो कटरा नील हो, खारी बावली हो, दरीबा कला हो, इन सभी क्षेत्रों के व्यापारी और आम नागरिक भी इस लड़ाई में शामिल थे। और इस समय जबकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन के साथ जब शुरू होगा यहाँ का मुख्य आयोजन और वंदे मातरम के स्वर गूंजेंगे उसकी उत्कंठा में और उल्लास में बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ उपस्थित जनसमुदाय है विशेष रूप से बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं। प्राचीर की तरफ देख कर उनके उत्साह और उमंग की अभिव्यक्ति उनके चेहरे पर साफ नजर आती है और जो पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ

0: भारी संख्या में लोग उपस्थित हैं, उनके स्वर, उनकी पहचान और उनकी आभा जो व्यक्तित्व की है वो भी बहुत आकर्षित कर रही है।
1: बिल्कुल जानेंद्र जी, और मैं देख पा रही हूँ कि बच्चे जो हैं वो बार बार टुकुर टुकुर निहार रहे हैं यहाँ ध्वज स्थल की ओर, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय और सम्मानित प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है। साथियों, आज का दिन हम अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, उनकी स्मृति को नमन करने के लिए भी विशेष तौर पर मनाते हैं। विशेष तौर पर आज का दिन हमें ये अवसर देता है, क्योंकि हम जानते हैं, तुम न समझो देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। स्वतंत्रता संग्राम के चिर परिचित सेनानियों के साथ ही गुमनाम नायकों के प्रति आज कृतज्ञता का भाव है, तो आज़ाद भारत के उन वीरों का गुणगान भी है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया है। मंगल पांडे की पहली चिंगारी से लेकर रानी लक्ष्मीबाई का दम्य साहस, सब कुछ हमें प्रेरित करता है। और हम देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है, इस समय ध्वज स्थल

0: माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रीय ध्वज फहराते
1: हैं।

0: Dörtü Nopolis var gol! Ve gol! Gel!
1: और इस समय आकाश में जो स्वर हमें सुनाई दे रहे ध्वनि सुनाई दे रही है वो उन हेलीकॉप्टर्स की है जो पुष्प वर्षा करते हुए लाल किले के प्राचीर के ऊपर से गुजर रहे हैं और लोगों की निगाह उसी आसमान की तरफ है। एक हेलीकॉप्टर ये Mi-17 हेलीकॉप्टर से भारतीय वायुसेना के, जिसमें एक हेलीकॉप्टर में राष्ट्रीय ध्वज उसमें दिखाई दे रहा है हवा के साथ अठखेलिया करता हुआ, और दूसरे हेलीकॉप्टर में नीचे लिखा है वंदे मातरम और पुष्प वर्षा करते हुए ये सभी यहाँ से हमारी बाई तरफ से दाहिनी तरफ आसमान में आगे बढ़ते हुए बच्चों के बीच खासतौर पर उल्लास और फूलों की पंखुड़ियां यहाँ चारों तरफ बिखरी दिखाई देती है। खासतौर पर जो सफेद वेशभूषा में बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ ठीक सामने उनके कपड़ों पर सफेद रंग पर जो पुष्प है पंखुड़ियां है पीले रंग की वो बहुत ही खूबसूरत बहुत ही आनंदित करने वाली लग रही है।
2: जी, और जनेंद्र किस तरह से बच्चे उल्लासित होकर प्रधानमंत्री जी को भी निहार रहे हैं और उनकी कोशिश है कि एक दो पंखुड़ी को वो कैच कर पाए और ये पंखुड़ियां इस समय हमारे बूथ की ओर भी आई। बेहद रमणीय दृश्य है ये।
1: जी, और राष्ट्रीय सलामी गारद अब राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद और राष्ट्रीय सलामी देने के बाद यहाँ से प्रस्थान करती हुई सेना के बैंड कुमायूं रेजिमेंट सेंटर जो इसमें शामिल थे जिसने आज पहली बार ये इतिहास रचा गया स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में पहली बार यहाँ राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन बजी, लेकिन सस्वर यहाँ उपस्थित हजारों लोगों ने उस गीत को अपने मुखार बिंदु से गाया है, चाहे वो प्राचीर के ऊपर बैठे हुए हमारे सभी अतिथियों दर्शक दीर्घाओं में या ठीक सामने हमारे बाईं और दाहिनी तरफ बड़ी संख्या में जो दर्शक दीर्घा में हजारों की संख्या में देश भर से पधारे हमारे दर्शक हैं, विशेष मेहमान हैं, दिल्ली वासी हैं, अलग अलग प्रदेशों के और केंद्र शासित प्रदेशों के वासी हैं, उन सबने अपने वेशभूषा में जिसमें बहुत सारे लोग हैं पारंपरिक वेशभूषा में खड़े होकर बड़े गर्व के साथ इस बार पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया। इस समय परेड कमांडर मेजर लोकेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में राष्ट्रीय सलामी गारद जो है हमारी दाहिनी तरफ जो उनका स्थल है इकट्ठे होने का वहां आगे की तरफ लाल किले के प्राचीर से ज्ञानपथ से होते हुए यहां से प्रस्थान करते हुए और आतुरता से यहां उपस्थित हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमुदाय देश के 145 करोड़ जनता और दुनिया भर के लोग आतुरता से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाल किले की ये प्राचीर जिसने पिछले 12 वर्षों में विकास के नए नए प्रतिमानों का बीजारोपण जहां से हुआ है लाल किले के प्राचीर से, और इस प्राचीर से विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचने और जन जन की प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर मिला है। राष्ट्र को जब प्रधानमंत्री महोदय संबोधित करते हैं तो उसे सभी सुनते हैं, सभी प्रेरणा लेते हैं, सभी उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि आज राष्ट्र की प्रति सोच, राष्ट्र के प्रति हमारी संवेदनाएं अपनी गहनता के शिखर पर हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, विकसित भारत बनना है। श्रोताओं,
3: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही है। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है, और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा की। अपने तप त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है जब अपने सपनों अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है, और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा है, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में

विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूत

देश के कोटि कोटि नागरिकों ने दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फाइव में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों, देश आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। 2014 तक आते आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल फाइव के उस डंप कर दिया था। ऐसे समय पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी है, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। अरे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना हुआ, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े, सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए, हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए, हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया, हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया, हजारों की संख्या में कंप्लायंसेज खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए। पिछली शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी की मार्च नहीं हो सकती। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी, जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले 1 दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प
कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मगौरव की जरूरत होती है और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसलिए बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है? आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महत्व हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है। और इसे चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं। और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वह एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, वैसे ये चर्चा क्रिटिकल मिनरल की हो रही है, पूरी टेक्नोलॉजी क्रिटिकल मिनरल पर निर्भर है, भारत इसमें भी अपने आप को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है। ये क्रिटिकल मिनरल का लक्ष्य साझा किया जाए, नेशनल क्रिटिकल मिनरल ये हमने लॉन्च किया, बजट में क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर

0: की हमने घोषणा की है।
1: कई देशों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं।
0: विश्व के कई देश अब इस क्रिटिकल मिनरल विषय में भारत के पर भरोसा करने लगे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों,
1: जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही
0: जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है।
1: अब एनर्जी के बिना भी
0: नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चीप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी।
1: एनर्जी सिक्योरिटी
0: ये हमारे समय की मांग है और इसलिए
1: हमने पहले से ही
0: उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं।
1: एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है
0: परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी।
1: हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके
0: एक नए लक्ष्य स्तर लाने का रास्ता तय कर लिया है।
1: 2047 तक
0: हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
1: इसी एक दशक में
0: हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने 5 ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है
1: और इसके कारण परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में
0: हमें एक बहुत बड़ा सफलता का कदम हमने रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों,
1: कई बार संसाधनों की कमी के कारण
0: देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती है।
1: जब सोच बंद जाती है, सीमाओं में सड़ने लग जाती है, तब
0: हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते।
1: देश को आज कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है और हमारी गलत सोच के कारण है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमने समुद्री तट पे 99% हमारा समुद्री तट का पूरा हिस्सा ऐसी सोच के कारण नो गो एरिया घोषित करके रखा।
0: हमने ही समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमें फैसला किया ये नहीं चल सकता।
1: हमने उस 99% को
0: जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको
1: गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया
0: और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं।
1: हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा की थी और पिछले दिनों हमने 85,000 करोड़ रुपए इस काम के लिए आवंटित करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है।
0: मेरे प्यारे देशवासियों, एनर्जी सिक्योरिटी,
1: इसका मैंने कहा कि हमें अल्टरनेट स्रोतों की तरफ भी
0: पूरी शक्ति लगाना बहुत जरूरी है और इसलिए ऊर्जा का सही इस्तेमाल बढ़ाते हुए
1: भारत इसी दिशा में आज तेजी से काम कर रहा है। 2014 से पहले, मतलब आज से 12 साल पहले,
0: हमारे देश में सिर्फ 70 शहरों में पाइप से गैस की व्यवस्था थी
1: पाइप से गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 12 साल में इन 70 शहरों को हमने 700 शहरों तक पहुंचा दिया है। ये होती है रफ्तार, ये होता है विस्तार। 2014 के पहले मुश्किल से 20-22 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचता था, आज 2.25 करोड़ घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम हो रहा है। 12 वर्ष पहले देश में सोलर एनर्जी की कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी, 2 गीगावाट, आज 160 गीगावाट हमने प्राप्त किया है लक्ष्य। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक और जानकारी देता हूं, हमने इसका लाभ देश के मध्यम वर्ग को, सामान्य परिवार को मिले इस तरफ भी उतना ही ध्यान केंद्रित किया। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चालू की, आज मुझे संतोष है कि इतने कम समय में 50 लाख घरों का सोलर एनर्जी का काम हम आंकड़ा पार कर चुके हैं, तेजी से चल रहा है। और इसके कारण हजारों घरों का बिजली बिल जीरो हो गया है, हजारों घर अपनी बिजली का उपयोग करने से अतिरिक्त बिजली आज बेच करके कमाई कर रहे हैं। हर परिवार को हम इस काम के लिए 80,000 रुपया सरकार की तरफ से एक एक परिवार को मदद दी जा रही है, तब जाकर के हम इस काम को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के हैरानी होगी, ये जो हमारी रेलवे है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे देश में 1925 में शुरू हुआ था। 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन 90 साल में, 1925 से लेकर के 90 साल में सिर्फ 30% रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, यानी 90 साल में 30%। हमारी रफ्तार देखिए, लक्ष्य को पाने के लिए हमारी दौड़ देख लीजिए। हमें इन एक दशक के अंदर 70% काम पूरा कर दिया, 90 साल में 30%, 10 साल में 70%, ये होता है काम। और इसके कारण डीजल जो हमें बाहर से लाना पड़ता है उसकी बचत हुई, बिजली से हमारी ट्रेनें चली, पर्यावरण को फायदा होने लगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम यहां से नहीं रुके हैं, हम दुनिया के अंदर पीछे रहना नहीं चाहते। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, भारत ने ईंधन का एक नया क्षेत्र को भी छू लिया है, देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है। और मुझे खुशी है, ये सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे ताकतवर ट्रेन है, और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है। प्यारे देशवासियों, पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। पिछले 10-12 वर्ष में इतने संकटों का सामना करना पड़ा, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई। कोरोना से बाहर निकले, युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी, कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया,

जगह पर तनाव का माहौल और पता नहीं भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी। देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। ईस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा। सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया के इन संकटों का प्रभाव हर किसी पर हुआ, हम भी अछूते नहीं। यूरिया के दाम दुनिया में 3000 रुपये पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3000 रुपये में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1350 रुपए में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा। लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया है। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वो बंद सुनाई नहीं देती है। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है, संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स। इतना ही नहीं, भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भरते मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, दूसरी तरफ आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा एफटीए एग्रीमेंट हो रहा। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है। लेकिन मैं ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं,

हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, केरलम से लेकर के गुजरात और तमिलनाडु से लेकर के बंगाल, ये हमारा समुद्र तट, हमारे मछुआरे भाई बहन आज इस एफपीए के कारण हमारे स्वीप यानी जुआ उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है। हमारे सी फूड की दुनिया में पहुंच बनने की संभावना पड़ी हुई है। और इसे मैं चाहूंगा हमें इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए हम आगे चलते हुए हम इन कामों को पार करने के लिए प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सभी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है और अगला 1/4 हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कल्चर बदलना होगा, हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। वो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं, वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। और इसलिए हमें रिफॉर्म की गति को भी आगे बढ़ाना है। और जब मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, रिफॉर्म नहीं हमारे लिए कोई कंपल्शन है, नहीं रिफॉर्म ये हमारे लिए कोई बजबर है, हमारे लिए रिफॉर्म ये कन्विक्शन है। आउट ऑफ कन्विक्शन हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं और हम आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की ओर बढ़ने वाले हैं। और इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोच में रिफॉर्म करना होगा, अपने लक्ष्यों को रिफॉर्म करना होगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, हमें एक निश्चित दिशा में को लेकर के चलना होगा। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्त धारा की बात करता हूं, सप्त धारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे ऊर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चाहे हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का

भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं तीन चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, यह समय का यह अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें। और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेनर, हर एमएसई से, एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए, क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज। और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए, यही हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने, अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है, हमें खेत से लेकर हमें एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे, तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है, पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है। और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी, उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उसमें तेजी करनी चाहिए। और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। ये गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट्स को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। अरे रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है, तब भारत विश्व के लिए बाजार बनकर के नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हुआ, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज, उस पर हमें
लीडरशिप लेनी होगी। साथियों, साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है, वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। हमें दुनिया में, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है, ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है, फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है, ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत सप्तधारा की जब बात करके लेकर चला है तो हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है, और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हील इन इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारे गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। आज भारत ने वर्ल्ड समिट को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है उसकी राह देखता रहता है, और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत के क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के पास विशाल वन्य संपदाएं हैं, हमारे पास 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है। क्षमता बहुत है, लेकिन विदेशी टूरिस्टों को आकर्षित करने में हम कम पड़े हैं। हमें मौका है हमारे सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया के टूरिस्टों को भारत के लिए आकर्षित करने का। हमारा सामर्थ्य हमें दुनिया को दिखाना है। हम ये काम आरा से करें और हम जल्द से जल्द हम इन लोगों आज दुनिया में स्पोर्ट्स की जो है वो भी एक बहुत बड़ा भारत के प्रति आकर्षण का केंद्र। दुनिया के स्पोर्ट्स इवेंट भारत में क्यों न हो। कॉन्सेंट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, देश के नौजवानों का आकर्षण है। विश्व का हर कोई कलाकार चाहता है कभी न कभी भारत की धरती पर अपना कॉन्सेंट करे। ये बहुत बड़ा अवसर है, हमें इसको मोबिलाइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। साथियों, सप्तधारा की सात शक्तियां, सप्त शक्तियां उद्देश्य सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है, दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो। भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए।
भारत की फार्मा की दिशा में हमने बहुत काम किया है, लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए, भारत उसमें अपना स्थान बनाना चाहिए। लॉ फर्म्स होते हैं, रेटिंग एजेंसी होती है, क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे हाथ में होनी चाहिए? टैलेंट है, सामर्थ्य है, हमारा लंबा इतिहास भी है, भाषाओं पर हमारा प्रभुत्व है, हमें विश्व में पहुंचना चाहिए। हमारी कोई कंसल्टिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म दुनिया के टॉप फर्म्स के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए? भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के अंदर सिरमौर हो, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे ऐसे ब्रांड हो जिससे दुनिया आकर्षित होती हो, हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए, उस दिशा में हमें काम करना है। और इसके लिए मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को कहना चाहता हूं, भारत सरकार का भी यह दायित्व है कि हमें हमारे रिफॉर्म की गति बढ़ानी होगी, हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा, हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते, हमें काल आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा। और इसको अगर हम गढ़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी न करते हुए हम विकसित भारत का सपना पार करके रहेंगे। हमें सबको मिलकर के चलना है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इंडस्ट्री हो, हम सब ने मिलकर के आगे बढ़ना है। हमें रिफॉर्म्स करते रहना है, रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते रहना है। और मैंने पहले भी कहा था, हम रिफॉर्म कंपल्शन से नहीं, कन्विक्शन से कर रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है। और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश को नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर, और देश के नौजवानों को उसने नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है, 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं, और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों, 2004 से 14 आंकड़े मुझे देना चाहिए आपको, 2004 से 14 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी, और आज 10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है, करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर
विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले।

का प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले, हम स्टार्टअप ओपन कर दिया। आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल की एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया उन्होंने। बहुत बड़ा काम कर दिया साथियों। आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके थे। बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का, बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। दोस्तों, दो हजार 9-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस 25-26 में 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफलता पाई। मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। ये देश के नौजवानों के लिए। मेरे साथियों, ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया है। स्वामित्व योजना गांव में ड्रोन से स्वामित्व योजना सफल हो रही है। करीब 3.25 करोड़ परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है और इसके कारण 140 लाख करोड़ रुपए जैसी संपत्ति अनलॉक हुई है, जिसके कारण बैंक से लोन मिल सकता है, लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए, हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है, वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए, और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले।

वो खिले की बात कर रहा हूं तब। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। तो आप इस योजना ने बहुत बड़ी सफलता की है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बन करके आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती है ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत दो तिहाई खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान है, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग देकर के देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। मेरे प्यारे युवा, देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने नशा एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। नशा मुक्त भारत, ये हम सबका सामूहिक दायित्व होना चाहिए। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारी युवा पीढ़ी मजबूत हो, हमारा युवा सामर्थ्य हमारे देश के लिए काम आए, इसलिए नशा मुक्त भारत। पिछले दिनों माय भारत के वॉलेंटियर्स ने, देश के एनजीओ ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक कार्यक्रम तय किया है। 100 सप्ताह तक एक अभियान चलने वाला है। मैं हर परिवार को कहना चाहता हूं कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, आप इसके साथ जुड़िए और देश के नशा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए आप आगे आइए। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद, माओवाद, लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दुर्बल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया और मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने 4-4 दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा
हमारी पुलिस के सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवीय को सुरक्षा मिले। इन नक्सलवाद ने धरती को लहू लुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है। पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना। इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है। अब युद्ध सीमा पर ही होता है, गारंटी नहीं है। युद्ध सीमा के अंदर कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा है। करीब 100 देशों में हमारे अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं। वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही है। बदलते हुए समय में अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना है, सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना होगा। पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है वो कालबाह्य हो चुकी है। और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे, आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे, आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है। एक बहुत बड़ा वॉलेंटरी फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेलकूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे दिखाई दे रही है। स्टेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटी आगे दिख रही है। आज सेना में भी
एनडीए से जो बच्चियां निकली हैं वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी। मेरी बेटियों की ताकत कैसी है, मैं पिछले दिनों सारण में एक सेमीकंडक्टर प्लांट में गया, वहां आदिवासी बेटियां देश के अलग अलग कोने से आई हुई बेटियां काम कर रही, वो उस गांव से आई थी जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था, वो बेटियां विदेशों में गई ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है और बड़े कॉन्फिडेंस, मैं जो उनका कॉन्फिडेंस देखा मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। और तीन करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। 2014 से पहले सिर्फ 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी का कवर था, सिर्फ 25 करोड़ का। साथियों, पिछले 5-7 दशक में सिर्फ 25 करोड़, हमने एक दशक के भीतर भीतर 100 करोड़ देशवासियों को सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया है। आयुष्मान भारत योजना से 70 साल की उम्र के बुजुर्गों से भी आज 5 लाख रुपए तक मुफ्त दवाई की व्यवस्था हो रही है। करोड़ों करोड़ों परिवारों को इसके कारण बहुत बड़ी सुविधा मिली है और इस आयुष्मान कार्ड के कारण 2 लाख करोड़ रुपया जो दवाई और ऑपरेशन के पीछे खर्च होना था वो मेरे परिवारों के बच्चे हैं, वो गरीब परिवार है, वो मध्यम वर्ग के परिवार है, उनको इतनी बड़ी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मुझे एक काम के लिए आपकी मदद चाहिए। मैं आप सबसे एक मदद मांग रहा हूं, सभी नौजवानों से मैं चाहता हूं कि आप इसका नेतृत्व करिए। आपका 1 या 2 घंटे देश को बहुत बड़ी शक्ति देने वाले। आपको लगेगा ये 1-2 घंटे में मैं देश की क्या शक्ति, मैं बताता हूं, आप बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले और इसलिए हर घर में वातावरण बने। इन दिनों देश में जनगणना का काम हो रहा है, सेंसस का काम हो रहा है, गिनती चल रही है और गिनती सिर्फ आंकड़ों से बात बनती नहीं है, उसकी बारीकियों से नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, देश आगे बढ़ने की अपनी रूपरेखा तैयार करता है और इसलिए सटीक जानकारियां होना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं, कभी स्पेलिंग एक लिख देते हैं, कभी अलग लिख देते हैं और इसके कारण अल्टीमेट परिणाम

0: हमें सही मिलने में दिक्कतें आती हैं।
1: अब जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इस बार निर्णय किया है, आप स्वयं भी जनगणना में अपनी जानकारियां अपने मोबाइल फोन से भर करके दे सकते हैं। बाद में कोई बाबू आएंगे, कोई प्रतिनिधि आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप परिवार के सब बैठ करके अगर डिजिटली अपना रजिस्ट्री करवा दे, सारी बारीकियां, स्पेलिंग में भी गलती ना हो, कोई भी जानकारियों में गलती ना हो, आप जितनी परफेक्ट जानकारी देंगे देश को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इसलिए मैं देश के नौजवानों कहता हूं कि आप अपने परिवार के लोगों को बिठा करके पूरे फॉर्म को समझिए, पहले कागज पे फॉर्म को भर दीजिए, कोई गलती है तो करेक्ट कर लीजिए और फिर टेक्नोलॉजिकली उसको डिजिटली इसको अपलोड कर दीजिए। आप देखिए इतना बड़ा काम देश कर लेगा और देश का समय और शक्ति सही काम के लिए उपयोग आएगा। और इसलिए मेरे देश के नौजवानों को जनगणना के इस काम में सक्रियता से जुड़ने के लिए मैं आग्रह करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने लाल किले से पंच प्राण की बात कही थी। इस पंच प्राण ने देश को अपने आत्मगौरव की ओर लेकर के आगे बढ़ने का, लक्ष्यों को पार करने के सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संबल दिया है। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, उन सब से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। इस आइए इस संकल्प को हम दोहराएं, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए, कदम से कदम मिलाए, मन से मन मिलाए, लक्ष्य से जुड़े रहे, एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाए। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बहुत बहुत आभार महोदय। और वो सामने
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रेरणादायी वक्तव्य आपके जो लंबे समय तक सभी को प्रेरित करते रहेंगे। और इस समय हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, शान से वो लहराता हुआ, और हमारे दाहिनी ओर से तीन रंगों के गुब्बारे इस समय गगन को चूमने के लिए तैयार ऊपर उठते हुए सभी की निगाहें इन गुब्बारों को देखती हुई माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय अपने केंद्रीय मंत्रियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ध्वज स्थल से ही हाथ हिलाकर जो विशाल जनसमुदाय यहां पर उपस्थित है उनका अभिवादन, उनका स्नेह भी स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही जो एनसीसी कैडेट्स बैठे हैं, माई भारत के स्वयंसेवक इस समय बैठे हैं अपने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और बीच में नारंगी रंग से वंदे मातरम जिन्होंने लिखा है, वो करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति सम्मान और स्नेह प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का इस समय लाल किले की प्राचीर से उसके प्रांगण में प्रस्थान हो रहा है और सभी केंद्रीय मंत्री अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए शान से हमारा तिरंगा यहाँ पर लहराता हुआ सभी की निगाहें कभी प्राचीर की ओर, कभी आसमान में उड़ते तीन रंगों के गुब्बारों की ओर और कभी दाहिनी ओर जाती है, क्योंकि सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला उस ओर से आएगा कुछ ही देर में। और सभी इस उत्कंठा से भरे हुए कि अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने स्वयं को प्रधान सेवक कहा है, उन्हें नजर भर देख लें और अगर ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी उनके सर पर हाथ रख दें तो जीवन भर के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक ऐसी याद रहेगी जो इन युवाओं को तो प्रेरित करेगी ही, साथ ही इनके पूरे परिवार को और विद्यालयों को भी प्रेरित करेगी। हम आपको बताएं कि हर घर तिरंगा माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो ये अभियान शुरू हुआ है 9 अगस्त से इस बार 17 अगस्त तक चलेगा। इस बार नया ये है कि सूर्य पथ तिरंगा भी हमारे पास है, जिसने कि भूखंड और कालखंड की सीमाओं को छोटा कर दिया है। यही है वसुधैव कुटुंबकम का वास्तविक भाव। अलग अलग देशों में जहां जहां सूर्य रश्मियां पहुंचेंगी, यानी सूर्योदय के साथ ही भव्य उदय होगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज का भी, हमारे प्रिय तिरंगे का भी। विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावास और मिशन के परस्पर संयोजन से तिरंगा फहराया जाएगा, अनेक माध्यमों से प्रदर्शित किया जाएगा, वैश्विक स्तर पर तकनीक का परंपरा के साथ समागम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया और साथ ही इस मंच से आपने बात की शक्ति की, सप्त धारा की, यहीं से पंचप्रण का उल्लेख हुआ, स्वच्छ भारत यहीं से हमने अपनाया और फिर उसे दुनिया को भी दिखाया कि भारतीय जब एकजुट हो जाएं एक लक्ष्य के प्रति तो क्या कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना इसी मंच से हुई। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने विनिर्माण क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों को हासिल करने की प्रेरणा दी है, इनोवेशन का हब भारत को बनाने की बात कही है, भारत की सॉफ्ट पावर किस तरह दुनिया में अपना स्थान बना रही है इसका उल्लेख किया, तो साथ ही खेल क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र का भी उल्लेख किया है।
2: और माननीय
1: प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला हम देख रहे हैं कि इस समय बढ़ चला है ज्ञान पथ की ओर और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो उत्सुकता से अपने अपने स्थान पर खड़े होने को आतुर हैं। जानेंद्र,
2: निश्चित रूप से उनके लिए ये बहुत विशेष अवसर होता है जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय या लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करने के बाद जब वे यहाँ से प्रस्थान कर रहे होते हैं, उस समय इन सभी उपस्थित बच्चों को उनका स्नेह मिलता है। यहाँ पर दर्शक कार्यक्रम की समाप्ति के बाद भी बड़ी उत्कंठा से यहाँ उपस्थित होते हैं इस बात के लिए और उस काफिले के राह के किनारे कहीं खड़े होकर एक झलक पाने को आतुर होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का युवाओं के साथ जो जुड़ाव है, जो कनेक्ट है, वो बहुत अद्भुत है और इसीलिए वो देश, चूंकि ये युवाओं का देश है और इस देश के भविष्य में 1 करोड़ ऐसे युवाओं को जो कि कर्तव्य को अपनी पहचान बनाए, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखे, ऐसे 1 करोड़ युवा अपने आप को कौशल के साथ जोड़ते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं, इस बात का बहुत विशेष उल्लेख किया उन्होंने। इसके पहले भी उन्होंने अनेक बार युवाओं को केंद्र में रखते हुए अपनी विजन, अपने विजन को, अपनी सोच को यहाँ से इस मंच से साझा किया है। शक्ति की सप्तधारा का बहुत विशेष उन्होंने आज एक नई सोच दी है इस देश को और देश के प्रगति को, विकास को, और इसमें जो सात अलग अलग क्षेत्रों की उन्होंने बात की, दरअसल इसके पीछे चूंकि कार्य तो हर क्षेत्र में हो ही रहा है लेकिन इसको गति देने की बात है, इसको शक्ति देने की बात है। और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने वाहन से उतरकर बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं, इसलिए करतल ध्वनि के जो गूंज है वो आप तक पहुंच रही होगी। प्रधानमंत्री जी ने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए उन बच्चों को अपना आशीष दिया है और जो सात बच्चे वहां निकट हैं उनके, उन बच्चों के साथ वो हाथ मिलाकर उन्हें अपना स्नेह दे रहे हैं। इस समय बच्चों के लिए ये विशेष अवसर होता है क्योंकि एक बार का दृश्य मुझे याद है, पहले का बच्चे जब खड़े होते हैं तो सभी सब निकट आने की कोशिश करते हैं और ऐसे में थोड़ी सी अफरा तफरी भी होती है, लेकिन चूंकि अनुशासन और संयम का ये एक दृश्य इस समय एनसीसी के विद्यार्थी यहाँ पर दिखा रहे हैं तो वो दृश्य हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए युवा साथी अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का और उनका स्नेह प्राप्त कर रहे हैं।
1: जी, और जिन बालिकाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ मिलाया है उनके लिए तो ये एक ऐसा पल है जो वो लंबे समय तक याद करेंगी और जब एक लक्ष्य चुनेंगी, अपने जीवन को एक दिशा देंगी, उस समय भी ये पल उन्हें अभिभूत करता रहेगा, प्रेरित करता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय एनसीसी कैडेट्स के बीच से दोनों ओर हाथ हिलाते हुए जैसे एक साथ सभी को अपना स्नेह, अपना आशीष देना चाहते हूं। और ये कैडेट्स जो हैं बहुत ही मुश्किल से संयम दिखा रहे हैं, इस समय अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं निर्देशों का पालन करते हुए, लेकिन अपना स्नेह लगातार प्रकट कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति। हवा में दोनों हाथ हिलाते हुए नमस्कार भी कर रहे हैं और साथ ही भारत माता की जय के नारे यहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष लगा रहे हैं। मैं भारत के उज्ज्वल भविष्य का प्रमाण हूं, राष्ट्रहित में होने वाला सारा उत्थान हूं, स्वामी विवेकानंद के विचारों का चितवान हूं, मैं युवा हूं, मैं भारत का प्राण हूं।
2: प्रधानमंत्री जी ने एक जो उनके पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व से एक बात, एक संदेश जो साफ झलकती है वो है नई सोच नागरिक देवो भव का। नागरिक को केंद्र में रखते हुए अपने पूरे सुशासन के तंत्र को, व्यवस्था को उस ढंग से रूप देना, आकार देना। बच्चों के बीच से होते हुए प्रधानमंत्री महोदय अब दर्शक दीर्घा की तरफ जा रहे हैं। हमारी बाई तरफ जो दर्शक दीर्घाएं बनी है उसके रेलिंग के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग बड़े उत्साह उमंग से अपने अपने मोबाइल को हाथ में पकड़े हुए, वे कोई सेल्फी लेना चाहता है, कोई फोटो खींचना चाहता है, कोई हाथ हवा में लहराते हुए प्रधानमंत्री जी का अभिवादन और अभिनंदन कर रहे हैं। देश का ये वो नेतृत्व है जो दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय है, जो विकसित भारत की सोच और विजन को इस देश को जिन्होंने दिया है, इस देश के करोड़ों युवाओं को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और आत्मगौरव का भाव जिन्होंने भरा है। और हर व्यक्ति आज, हर भारतवासी इस विश्वास के साथ कि भारत विकसित होगा, भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत अपने स्वदेशी सोच और अपने पुरातन चिंतन के साथ, धर्म और आध्यात्म के साथ विश्व में अपनी पहचान बनाएगा, भारत विकसित भी होगा, अपनी विरासत के साथ विकसित होगा। इस समय दर्शक दीर्घा में काफी आगे तक प्रधानमंत्री जी बढ़ चुके हैं और उनकी इच्छा होती है कि कोई भी दूर दूर तक, जहां तक भी दर्शक आए हुए हैं और बल्कि ये देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, इसमें ऐसी बड़ी संख्या में हमारे दर्शक हैं जो अलग अलग जो सरकार की नीतियां रही हैं, उनकी योजनाएं रही हैं, उसका लाभ लेते हुए जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उन सबको विशेष रूप से इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ आमंत्रित किया गया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है, आकर्षण की चीज ये लगती है कि वो सभी अपने अपने प्रदेश की अलग अलग वेशभूषा में यहाँ पर आए हुए हैं। अधिकांशता उसमें से वहां प्रधानमंत्री महोदय के निकट अपने आप को पाकर वो निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे।
1: जी बिल्कुल जैनेन्द्र, और यहाँ पर भारत में जो अन्य देशों के दूतावास हैं उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी है, इस समय वे भी बेहद आह्लादित महसूस कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की यही शैली जो अपने देशवासियों से जुड़ने की शैली है, इससे दुनिया के बहुत सारे नेता प्रेरित हुए हैं और यही वजह है कि खाड़ी और मध्य पूर्व के देशों या हमारे पड़ोसी और एशियाई देशों या फिर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है, अपने देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिए हैं, सैन्य सम्मान दिए हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यवहार से अन्य देशों को भी दिखाया है कि किस प्रकार से अपने देशवासियों से जुड़ना है, उनके आकांक्षाओं को कैसे समझना है और किस प्रकार से उनके लिए जनहित की नीतियां बनाकर जन जन को राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए प्रेरित करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने प्रिय ये जो जनता है इनसे भेंट करने के बाद, सासने भेंट करने के बाद अब पुनः जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन लगातार हाथ हिलाते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा कर्मी हैं उनके लिए ये थोड़ी सी कठिन घड़ी है, क्योंकि लगातार पैनी दृष्टि हर ओर उन्होंने बना रखी है, लेकिन वो भी समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं सबके स्नेह का, इसलिए उचित दूरी उन्होंने बनाए रखी है, लेकिन पूरी तरह से मुस्तैद और चौकस हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर स्नेहिल मुस्कान है अपने देशवासियों को देखकर, और साथ ही जो बच्चे हैं यहाँ पर उन्हें देखते हुए, और ये जो देशवासी है इस समय आभार प्रकट कर रहे हैं एक तरह से उन नीतियों के लिए जिन्होंने इनके जीवन में बड़ा बदलाव किया है, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, जीएसटी हो, आर्थिक सशक्तिकरण हो, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, प्रधानमंत्री जी की कही ये उक्ति हो, हरित ऊर्जा हो, अंतरिक्ष अनुसंधान हो, जनधन से जन जन तक होता वित्तीय समावेशन हो, उन सभी के प्रति एक तरह से आभार प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहते हुए अपने जो ये संकेत है उनसे, और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के बेहद नजदीक पहुंच गए कुछ एनसीसी कैडेट और सुरक्षाकर्मी, उन्हें स्नेहिल भाव से थोड़ा हटाते हुए वहां थोड़ा अनुशासन बनाते हुए स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का सपना, डिजिटल भारत जिसकी धूम अब दुनिया भर में है, और साथ ही आत्मनिर्भर भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते रहे हैं हमारे उत्पाद जो हैं वो वैश्विक गुणवत्ता के हो, हमारे बाजार दुनिया भर के लिए खुले रहें, और जब भी कोई विदेशी मेहमान हमारे यहां आता है तो जो भोजन परोसा जाता है उसमें हमारे हर प्रांत का कोई एक व्यंजन उसमें होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और साथ ही जो हमारे बुनकर हैं उनके द्वारा बुनी हुई जो वस्तुएं हैं वो भेंट स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी देश दुनिया के बड़े नेताओं को देते हैं, और बहुत सारी इस तरह की सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ लगातार हमारे देशवासियों को मिलता रहा है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो मंच है गरिमामय मंच है यहाँ से भी देश दुनिया को एक नई दिशा दिखाई है, नए प्रयास किए हैं, देशवासियों को लगातार प्रेरित किया है आगे बढ़ने के लिए, और अब नया लक्ष्य हमारे सामने विकसित भारत का जिसमें हम सभी को लगातार योगदान देना है।
2: आज प्रधानमंत्री जी ने इस लाल किले के प्राचीर से जहां संकल्पों की बात की, संकल्प से सामर्थ्य के निर्माण की बात की, और सामर्थ्य से सफलता की राह पर आगे बढ़ते हुए देश को समृद्धि की राह पर विकसित भारत बनाने का एक संकल्प उन्होंने दिया।

बीते 12 वर्षों में सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो तमाम प्रयास किए गए हैं, उनके बारे में इस बात की परिकल्पना शायद पहले भी किसी ने नहीं की होगी कि उनका इतना बड़ा परिणाम और फल इस देश को मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें जनधन योजना की ही, तो जब जनधन योजना की शुरुआत हुई, आज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंकिंग सेवा देश के कोने कोने तक पहुंची है, हर गांव तक पहुंची है। 99.9

0: को संबोधित करने के बाद और यहाँ उपस्थित जनसमुदाय और विशेष रूप से युवा शक्ति के साथ संवाद और निकटता का एक भाव प्रेषित संप्रेषित करने के बाद अपने वाहन में सवार होकर यहाँ से अब प्रस्थान करने जा रहे हैं। आप सबके लिए उनकी तरफ से जो प्रेरणा मिली है इस राष्ट्र को निश्चित रूप से आगे लेकर जाएगी।
1: जी बिल्कुल। और माननीय प्रधानमंत्री जी अब अपने वाहन में सवार हो चुके हैं। वाहनों का काफिला मंथर गति से बूथ जो है हमारा उसकी बाईं ओर बढ़ता हुआ धीरे धीरे, और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो अब पुनः अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। जो आगंतुक है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों की भी तस्वीर इस समय ले रहे हैं, और साथ ही प्रधानमंत्री जी अपने वाहन के भीतर से भी हाथ हिलाकर लगातार सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। नया देश है, नया भारत है, बदलती तस्वीर है जिसमें बेटियों को भी बराबरी मिल रही है, और इसी वजह से शायद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब एनसीसी कैडेट्स के बीच पहुंचे तो सबसे पहले एक बेटी के सर पर हाथ रखा। सैन्य क्षेत्र, शिक्षा, विज्ञान, कृषि, फैशन, खेल और उद्योग क्षेत्र में भारत माँ की बेटियां भी प्रभावशाली प्रदर्शन कर रही हैं। फाइटर कॉम्बैट लीडर बनना हो या ड्रोन दीदी, या फिर अपनी मेहनत से सफलता के नए अध्याय रचती लखपति दीदी हो, माँ भारती का नाम रोशन कर रही हैं देश की बेटियां। कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे मेहनती खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण पदक जीते जिनमें 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। लगभग 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस दिशा में नए लक्ष्य हासिल किए जा रहे हैं और ऐसे ही लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी हमें दिए हैं। मत पूछो मुझसे देश क्या है, ये कागज पर खींची रेखा नहीं, ये उन वीरों की आखिरी सांस है जिन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं उनके प्रति आभार प्रकट करने का दिन आज, लेकिन साथ ही जो राष्ट्र निर्माण में लगातार सहयोग करते रहे हैं उनके प्रति भी। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान, प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार और कलाकार, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाज सेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सैनिक और सशस्त्र बल, अपनी कर्तव्य निष्ठा से हम सभी को विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाना है, इसमें अपना दायित्व निभाते हैं प्रवासी भारतीय भी। सभी के ऊपर ये दायित्व कि 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। और आपको फिर से एक बार आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए मैं तकनीकी टीम प्रमुख श्री जितेंद्र पुरुथी, तकनीकी टीम के सदस्य शांतनु घोष, शक्तिधर ध्यानी, अशोक कुमार मिश्र, कमल सिंह, सुमित कटियार, नागेंद्र पटेल, नीरज तिर्की, बाबूलाल मीणा, राजकमल शर्मा, नरेंद्र नाथ, किरण पाल सिंह, विष्णु आनंद तिवारी, अतुल कुमार, हेमराज मीणा, विशाल कुमार, अभिषेक कुमार, कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती मनीषा जैन, कार्यक्रम टीम के सदस्य विवेक कुमार तोमर, तुषार पाराशर, शाहनवाज खान, भगवती चरण बौखंडी, जगमोहन सिंह, कार्यक्रम संयोजक श्री प्रमोद कुमार वत्स के साथ मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर जैनेन्द्र सिंह और देवेंद्र त्रिपाठी के साथ पुनः 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लेकर चलती हूँ। जय हिंद।

आदाब, नमस्कार एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग श्रोताओं, आपने ट्यून इन किया है श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।
2: छड़ी मुबारक, एक परंपरा, एक आस्था। अमरनाथ यात्रा की सदियों पुरानी परंपराओं में छड़ी मुबारक का विशेष स्थान है। छड़ी मुबारक को भगवान शिव की पवित्र छड़ी माना जाता है। ये पवित्र छड़ी श्रीनगर के दशनमी अखाड़ा के श्री अमरेश्वर मंदिर में रखी जाती है और इसकी देखरेख महंत दीपेंद्र गिरी करते हैं। हर साल अमरनाथ यात्रा के दौरान इस पवित्र छड़ी को पारंपरिक विधि विधान के साथ श्रीनगर से पहलगाम ले जाया जाता है। यहां से इसकी अमरनाथ की पवित्र गुफा तक की पारंपरिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है। छड़ी मुबारक के साथ जुड़ी परंपराओं में भूमि पूजन, नवग्रह पूजन, ध्वजरोहण और छड़ी पूजन जैसे अनुष्ठान शामिल है। ये सिर्फ एक पवित्र वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की परंपरा नहीं है, बल्कि अमरनाथ यात्रा की प्राचीन धार्मिक परंपरा और उसकी निरंतरण का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करे।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण FM बालदल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, आज 15 अगस्त है, हमारा स्वतंत्रता दिवस। आज का दिन हमें सभी के लिए बहुत खास है। ये दिन हमें उन लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया और अपने जीवन का बलिदान दिया। आज हमारा तिरंगा देश के हर कोने में शान से लहरा रहा है। ये हमारी आज़ादी और हमारी एकता की निशानी है। आइए इस खास दिन पर हम अपने देश की एकता, भाईचारे और अमन को बनाए रखने का संकल्प लें। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनते रहिए श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण।

0: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
1: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

श्रोताओं, अमरनाथ यात्रा 2026 के दौरान छड़ी मुबारक से जुड़ी कई महत्वपूर्ण अनुष्ठान श्रीनगर में भी होंगे। 12 अगस्त को छड़ी मुबारक को श्रीनगर के प्रसिद्ध शंकराचार्य मंदिर ले जाया गया, जहां दर्शन और पूजन की परंपरा निभाई गई। 13 अगस्त को पवित्र छड़ी को शरीका भवानी मंदिर ले जाया गया। 15 अगस्त यानी आज श्री अमरेश्वर मंदिर दशनमी अखाड़ा में छड़ी स्थापना की परंपरा पूरी की जाएगी और 17 अगस्त को नाग पंचमी के पवित्र अवसर पर दशनमी अखाड़ा में पारंपरिक छड़ी पूजन होगा। इसके बाद 22 अगस्त से छड़ी मुबारक अमरनाथ की पवित्र गुफा की ओर अपनी मुख्य यात्रा पर रवाना होगी। श्रोताओं, सुनते रहिए श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण।

श्रोताओं, 22 अगस्त से छड़ी मुबारक अमरनाथ की पवित्र गुफा की ओर अपनी मुख्य यात्रा पर रवाना होगी। 22 और 23 अगस्त को पहलगाम में रात का पड़ाव होगा और 24 अगस्त को यात्रा चंदनवाड़ी पहुंचेगी, जहां रात का विश्राम होगा। 25 अगस्त को छड़ी मुबारक शिशनाग पहुंचेगी। 26 और 27 अगस्त को पंचतरणी में दो रात का पड़ाव होगा और 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर छड़ी मुबारक अमरनाथ जी की पवित्र गुफा पहुंचेगी। यहां विशेष पूजन और दर्शन के साथ इस वर्ष की पारंपरिक छड़ी मुबारक यात्रा का समापन होगा। इस पूरे पारंपरिक मार्ग में पहलगाम, चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी प्रमुख पड़ाव हैं।

श्रद्धालुओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। छड़ी मुबारक और श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बालदल और चंदनवाड़ी के नियमित यात्री मार्ग पर यात्रा 9 अगस्त 2026 से ट्रैक रेस्टोरेशन के काम और मौसम संबंधी सलाह के कारण स्थगित है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा से जुड़ी आधिकारिक जानकारी और ताज़ा सलाह का पालन करें।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, अमरनाथ यात्रा की सदियों पुरानी परंपराओं में छड़ी मुबारक का विशेष स्थान है। छड़ी मुबारक को भगवान शिव की पवित्र छड़ी माना जाता है। ये पवित्र छड़ी श्रीनगर के दशनमी अखाड़ा के श्री अमरेश्वर मंदिर में रखी जाती है और इसकी देखरेख महंत दीपेंद्र गिरी करते हैं। हर साल अमरनाथ यात्रा के दौरान इस पवित्र छड़ी को पारंपरिक विधि विधान के साथ श्रीनगर से पहलगाम ले जाया जाता है। यहीं से इसकी अमरनाथ की पवित्र गुफा तक की पारंपरिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है। छड़ी मुबारक के साथ जुड़ी परंपराओं में भूमि पूजन, नवग्रह पूजन, ध्वजरोहण और छड़ी पूजन जैसे अनुष्ठान शामिल हैं। ये सिर्फ एक पवित्र वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की परंपरा नहीं है, बल्कि अमरनाथ यात्रा की प्राचीन धार्मिक परंपरा और उसकी निरंतरता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। श्रोताओं, छड़ी मुबारक के बारे में और बात करेंगे, आप तक और जानकारी पहुंचाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा के विशेष प्रसारण में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण FM बाल दल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, आज का दिन हम सभी के लिए बहुत खास है। ये दिन हमें उन लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत संघर्ष किया और अपने जीवन का बलिदान दिया। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनते रहिए श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण।

श्रद्धालुओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। छड़ी मुबारक और अमरनाथ यात्रा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बालतल और चंदनवाड़ी के नियमित यात्री मार्ग पर यात्रा 9 अगस्त 2026 से ट्रैक रेस्टोरेशन के काम और मौसम संबंधी सलाह के कारण स्थगित है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा से जुड़ी आधिकारिक जानकारी और ताजा सलाह का पालन करें। छड़ी मुबारक की पारंपरिक यात्रा पहलगाम वाले मार्ग से होगी और इसी मार्ग के जरिए 2026 की यात्रा का पारंपरिक समापन होगा। पवित्र छड़ी मुबारक महंत दीपेंद्र गिरी दशनमी अखाड़ा श्रीनगर की देखरेख में है। श्रोताओं, साधु संतों और उनके साथ चलने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन के साथ मिलकर जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं और सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि सुरक्षित यात्रा के लिए समय समय पर जारी की जाने वाली आधिकारिक सलाह और निर्देशों का पालन करें। यात्रा से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। श्रोताओं, आप सुनते रहिए श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वीर्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, बात करते हैं छड़ी मुबारक और पहलगाम मार्ग की। अमरनाथ यात्रा में छड़ी मुबारक का बहुत खास महत्व है। छड़ी मुबारक को भगवान शिव की पवित्र छड़ी माना जाता है। यह छड़ी श्रीनगर के दशनमी अखाड़ा में रखी जाती है और हर साल परंपरा के अनुसार इसे अमरनाथ की पवित्र गुफा तक ले जाया जाता है। इस यात्रा में पहलगाम का भी खास स्थान है। पहलगाम मार्ग अमरनाथ यात्रा के पारंपरिक मार्ग का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। पहलगाम से छड़ी मुबारक की पारंपरिक यात्रा आगे बढ़ती है। यहां से चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी होते हुए पवित्र गुफा तक पहुंचा जाता है। पहलगाम में छड़ी मुबारक से जुड़ी पूजन और अन्य पारंपरिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। इसलिए छड़ी मुबारक और पहलगाम मार्ग दोनों अमरनाथ यात्रा की पुरानी परंपरा और आस्था से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। ये परंपरा आज भी श्रद्धा और सम्मान के साथ जारी है। श्रोताओं, सुनते रहिए श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, छड़ी मुबारक के बारे में मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं हमारे पहलगाम के संवाददाता एस्तारिक। एस्तारिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: आपका भी बहुत शुक्रिया अनिका जी, और इस विशेष प्रसारण के सभी श्रोताओं को यौम आजादी के अवसर पर बहुत बहुत मुबारकबाद। तो 57 दिन तक चलने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के अब 13 दिन शेष रह गए हैं। तो प्रिय श्रोताओं को मैं सबसे पहले मौसम के बारे में आपको सूचित कर दूं, क्योंकि मौसम का निर्बल है इस वक्त यात्रा के साथ। तो पहलगाम से श्री अमरनाथ जी गुफा तक यात्रा रूट पे आज मौसम ज्यादातर अबरारू रहने की पेशगोई की गई थी। बुलंद मुकाम पर दर्ज हरारत तकरीबन 9 से 13 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि पहलगाम और चंद्रमारी की जान दर्ज हरारत 18 से 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। मौसमियात के मुताबिक दोपहर के बाद बादलों में इजाफा होने के साथ हल्की बारिशों और वक्त-वक्ती से बारिशों के 25 से 50% तक तवज्जो है। इस दौरान गुरुबी मगरबी हवाएं तकरीबन 6 मील

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी शक्ति दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है और ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की जनता से अधिक विकसित, समृद्ध और उज्जवल पश्चिम बंगाल के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। श्री अधिकारी ने स्वतंत्रता दिवस पर राज्य की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी, इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। इनमें 13 ऐसे वीर शामिल हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा। लेबनान में आज सवेरे इज़राइल के हमलों में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेबनान और इज़राइल में इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिणी लेबनान के इज़राइली सैनिकों को लौट जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल की जानी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री अरबिंदो की जयंती पर स्मरण किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अरबिंदो को एक महान दार्शनिक, राष्ट्रवादी कवि और विचारक बताया। प्रधानमंत्री ने पारसी नववर्ष नवरोज के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि पारसी समुदाय के लोगों के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान ने देश को अनगिनत तरीकों से समृद्ध किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। गाल में श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 101 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. The nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag at the Red Fort in Delhi and addressed the nation. The celebrations this year also commemorates Yuva Shakti, acknowledging the contribution of Young India in building a Viksit Bharat by 2047. Addressing the nation, Prime Minister Modi said that this is the first time since independence that Vande Mataram has resonated from the ramparts of Red Fort.
1: आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए, उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
2: Mr. Modi unveiled a 7-point reform framework, or Saptadhara, aimed at accelerating India's journey towards becoming a Viksit Bharat by 2047. He said work that could not be completed in the past 5 to 7 decades must be achieved within the next 5 to 7 years. Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle-class family for various public examination.
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
2: Prime Minister Modi said since 2014, India has entered into free trade agreements with nearly 40 countries, creating enormous opportunities for Indian businesses and exporters.
1: 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा FTA एग्रीमेंट हो रहा है। ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, ये बहुत बड़ा अवसर है। मैं मेरे MSMEs को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है, दुनिया में हमें पहुंचना है। भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे, चाहे हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है।
2: The Prime Minister has urged all parties to support the implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies without making it a political fight. Mr. Modi asked them to step forward to honour women and ensure that country's women secure 33% representation in the legislative assemblies and the Lok Sabha as soon as possible. Reports of Independence Day celebrations are pouring in from states and union territories. Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi today outlined an ambitious roadmap for a developed Odisha with emphasis on security, education, investment, infrastructure and employment as the state celebrated the 80th Independence Day. Addressing the state-level function in Bhubaneswar after unfurling the tricolour, Mr. Majhi said, coordinated efforts of the centre and the state have brought left-wing extremism to an end in Odisha, creating new opportunities for development in the affected areas. In Kashmir, the Independence Day was celebrated across all 10 districts with patriotic fervour and enthusiasm. The main function was held at the iconic Bakshi Stadium, where Chief Minister Umar Abdullah unfurled the national flag and took the salute at the ceremonial parade. Addressing the gathering, the Chief Minister said the situation in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir has made it clear that the decision taken by the ancestors of this part of Jammu and Kashmir to be with India was the correct one. In Punjab, the state-level ceremony was held at the border district of Firozpur, where Chief Minister Bhagwan Singh Mann unfurled the national flag. The national song, Vande Mataram, was played before the national anthem. President Draupadi Murmu today paid homage to the Bravehearts at the National War Memorial on the occasion of 80th Independence Day. The President laid a wreath at the memorial and paid tributes to the martyrs. In men's cricket, India were 101 for 1 at lunch against hosts Sri Lanka in the first test of the two-match series at Goa International Cricket Stadium. Earlier, India won the toss and elected to bat. And that is the end of this news bulletin.

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रहे।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर।

श्रोताओं, आज के इस खास विशेष प्रसारण में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अनीका रशीद फराश आपसे विदा लेती हूं। अब इस विशेष प्रसारण में आपके साथ जुड़ेंगी फरजाना, जो इस प्रसारण को आगे लेकर जाएंगी और आप तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाएंगी। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। एफएम बालतल 103.7, एफएम पहलगाम 100.1, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, आज तारीख है 15 अगस्त 2026 और आज पूरा हिंदुस्तान आजादी के रंग में सरोवर है। जी हाँ श्रोताओं, आज हमारे शो पर एक बहुत ही अनोखा संगम हो रहा है। आज हमारे पास दो सबसे बड़े जज्बे हैं, एक तरफ देश के लिए शक्ति यानी हमारा इंडिपेंडेंस डे और दूसरी तरफ हिमालय की गोद से आने वाली भक्ति यानी हमारी पावन अमरनाथ यात्रा। आज का दिन उन वीरों का भी है जो सीमा पर खड़े हैं और उन भोले के भक्तों का भी है जो हर मुश्किल रास्ते को पार करके बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आए हैं। श्रोताओं, जब हम कश्मीर की बात करते हैं ना, तो यहां की हवा में एक अलग ही सुकून है। अमरनाथ यात्रा पर आए हुए यात्रियों का उत्साह देखकर दिल खुश हो जाता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से खराब मौसम और रास्तों की मरम्मत की वजह से बालतल और पहलगाम दोनों जो मार्ग है उन पर जो यात्रा है वो वहां से यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है और अब सभी को इंतजार है 28 अगस्त का, जब पारंपरिक छड़ी मुबारक गुफा की तरफ बढ़ेगी। लेकिन भक्तों का जो जोश है ना, वो कम नहीं हुआ है। जम्मू में या श्रीनगर के बेस कैंप्स में जो यात्री रुके हैं, उनका कहना है रास्ते भले ही थमे हैं पर भोले के लिए उनके कदम नहीं रुकेंगे। और सच पूछूं तो ये ही तो हमारे देश की खूबसूरती है। एक सच्चा देशभक्त ही सबसे बड़ा सेवक होता है और एक सच्चा भक्त ही देश का सबसे बड़ा शुभचिंतक होता है। चलिए इस खूबसूरत विश्वास के साथ सुनते हैं एक ऐसा गीत जो आपको देशभक्ति और शिव भक्ति दोनों के रंग में रंग देगा।

श्रोताओं, आज योम आज़ादी के मौके पर हमारे लाल चौक का नज़ारा देखने लायक है। जी हाँ, घंटाघर को बिल्कुल ट्राई कलर लाइट से सजाया गया है और डल लेक पर जो म्यूजिकल लेजर शो हुआ, वहाँ हर तरफ तिरंगे की रोशनी बिखरी हुई है। लोकल कश्मीरी भाई बहन और बाहर से आए हमारे अमरनाथ यात्री सब मिलकर आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। श्रोताओं, आप सभी को एक बार फिर से 80th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई। जी हाँ, आप बने रहिए हमारे संग FM बालतल, FM पहलगाम के संग।

श्रोताओं, चाहे रास्ते पहाड़ों के हों या जिंदगी के, अगर दिल में देश के लिए प्रेम और ऊपर वाले पर विश्वास हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। यहां हर जर्रे में शक्ति है, हर दिल में आजादी की भक्ति है। पहाड़ों की ऊंचाइयों से आती है गूंज, बस यही पैगाम देती है कि जब तक ऊपर वाले का आशीर्वाद है, ये देश हमेशा आबाद है। आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। अब हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो, जहां से आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी शक्ति दिखाई। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूँ, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 80वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता दिवस उत्साह, उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। चेन्नई में 80वें स्वाधीनता दिवस पर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सेंट जॉर्ज किला पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार जनता के लिए लाभकारी योजनाओं को लागू करने के लिए केंद्र के साथ सहयोग बनाए हुए है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दोहोमा ने कहा है कि राज्य संतुलित और समावेशी विकास की ओर अग्रसर है। आइजोल में स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री लाल दोहोमा ने कहा कि उनकी सरकार आत्मनिर्भर और विकसित मिजोरम बनाने तथा जनता की जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्यरत है। त्रिपुरा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महाराजा वीर विक्रम महाविद्यालय में विशेष देशभक्ति संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। वंदे मातरम इन 1000 वॉयसेज नामक इस कार्यक्रम में 1300 से अधिक विद्यार्थियों, पूर्व विद्यार्थियों और शिक्षकों ने एक साथ वंदे मातरम का गायन किया। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हवाई हमलों में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। लेबनान और इसराइल के बीच इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिण लेबनान से इसराइली सैनिकों को वापस जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल शुरू करनी थी। इंडोनेशिया के फ्लोरेस क्षेत्र के पास आज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से 20 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से कई इमारतें भी ढह गईं। भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए हैं और 2 अब लापता हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। गाले में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने चायकाल तक 1 विकेट पर 101 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। फिलहाल वर्षा के कारण खेल रुका हुआ है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag at the Red Fort in Delhi and addressed the nation. The celebrations this year also commemorates Yuva Shakti, acknowledging the contribution of young India in building a Viksit Bharat by 2047. Addressing the nation, Prime Minister Modi said, "This is the first time since independence that Vande Mataram has resonated from the ramparts of Red Fort."
1: वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए, उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
0: Mr. Modi unveiled a 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming a Viksit Bharat by 2047. He said work that could not be completed in the past 5 to 7 decades must be achieved within the next 5 to 7 years. Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle-class families for various public examinations. Prime Minister Modi said since 2014, India has entered into free trade agreements with nearly 40 countries, creating enormous opportunities for Indian businesses and exporters.
1: 2014 के बाद दुनिया करीब 40 देशों के साथ हमारा FTA agreement हो रहा। ये जो trade agreements हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा अवसर है। मैं मेरे MSMEs को कहना चाहूँगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुँचना है। भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे, चाहे हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है।
0: The Prime Minister has urged all parties to support the implementation of women's reservation in parliament and state assemblies without making it a political fight. Mr. Modi asked them to step forward to honour women and ensure that country's women secure 33% representation in the legislative assemblies and the Lok Sabha as soon as possible. In Kashmir, the Independence Day was celebrated across all 10 districts with patriotic fervour and enthusiasm. The main function was held at iconic Bakshi Stadium, where Chief Minister Umar Abdullah unfurled the national flag and took the salute at the ceremonial parade. Addressing the gathering, the Chief Minister said the situation in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir has made it clear that the decision taken by the ancestors of this part of Jammu and Kashmir to be with India was the correct one. West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari has called upon the people of the state to work together to build a more developed, prosperous and brighter West Bengal. In his Independence Day address through Akashvani Kolkata this morning, Mr. Adhikari extended his greetings to the people of the state on the 80th anniversary of independence. Tripura Governor Indira Sena Reddy Nallu paid heartfelt tribute to the freedom fighters on Independence Day, recalling their supreme sacrifices and urging people to draw inspiration from their courage, patriotism and dedication. President Draupadi Murmu today paid homage to the brave hearts at the National War Memorial on the occasion of 80th Independence Day. The president laid a wreath at the memorial and paid tributes to the martyrs. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended greetings to the countrymen on the occasion of Parsi New Year, Navroz. In a social media post, Mr. Radhakrishnan prayed that this new year brings peace, prosperity and happiness to every family and inspire all to strengthen the bonds of unity, harmony and brotherhood in the nation. In a social media post, Mr. Modi said that the Parsi community's remarkable contribution across sectors has enriched the nation in countless ways. Prime Minister Narendra Modi has remembered Sri Aurobindo on his birth anniversary today. In a social media post, Mr. Modi called Sri Aurobindo a towering philosopher, naturalist, poet and thinker. In men's cricket, India were 101 for 1 against hosts Sri Lanka in the first test of the two-match series at Galle International Cricket Stadium. Earlier, India won the toss and elected to bat. And that is the end of this news bulletin.
2: आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, आज नाग पंचमी है और नाग पंचमी का अमरनाथ यात्रा और छड़ी मुबारक के शेड्यूल में एक बेहद खास और महत्वपूर्ण स्थान है। आज 15 अगस्त 2026 नाग पंचमी के पावन अवसर पर ही छड़ी मुबारक की आगे की यात्रा का रास्ता जो है वो साफ होता है और कई सालों से चली आ रही रस्में निभाई जाती है। इसका महत्व और आज का शेड्यूल इस प्रकार है। नाग पंचमी के दिन ही श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा स्थित श्री अमरेश्वर मंदिर में पावन छड़ी मुबारक को स्थापित किया जाता है। इस दिन की पूजा के बाद ही छड़ी मुबारक आम जनता और साधुओं के दर्शन के लिए पूरी तरह तैयार होती है और इसके बाद आगे के पढ़ावों की तिथि निर्धारित होती है, क्योंकि भगवान शिव अपने गले में नाग धारण करते थे। इसलिए अमरनाथ यात्रा की इस आखिरी और सबसे पवित्र कड़ी की शुरुआत के लिए नाग पंचमी के दिन को सबसे शुभ माना जाता है। आज सुबह से ही दशनामी अखाड़ा में महंत दीपेंद्र गिरी जी की देखरेख में साधुओं और दशनामी सन्यासी द्वारा विशेष आरती के साथ छड़ी स्थापना की पूजा संपन्न की जा रही है। इस स्थापना के बाद अब 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त को इस स्थान पर छड़ी पूजन किया जाएगा, जिसके बाद ये पावन छड़ी 22 अगस्त को पहलगाम के लिए रवाना होगी।

जंग कर, शिर जटा जूट धर, कर डमरू बाजी।

0: यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।
2: आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं FM बालथल, FM पहलगाम, DTH और न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं माफ करिएगा, आज नागपंचमी नहीं है, आज जो है छड़ी मुबारक को दशनामी अखाड़ा, जी हाँ दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में, वहाँ पर छड़ी स्थापना की रस्में जो हैं वो की जा रही हैं। आपको मैं छड़ी मुबारक के हवाले से कुछ के शेड्यूल के हवाले से कुछ जानकारी आप तक पहुंचाना चाहूंगी। 12 अगस्त को पवित्र छड़ी जो है उसका विशेष उसकी विशेष पूजा के लिए ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर ले जाया गया। 13 अगस्त 2026 को हरिपर्वत पर स्थित शारिका भवानी मंदिर में पूजा की गई। आज यानी कि 15 अगस्त 2026 को दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में छड़ी स्थापना की रस्में जो है वो की जाएंगी। 17 अगस्त नाग पंचमी के अवसर पर दशनामी अखाड़ा में मुख्य छड़ी पूजन की जाएगी। मुख्य पैदल यात्रा 22 अगस्त 2026 से शुरू होगी, जो पारंपरिक पहलगाम रास्ते से होते हुए अलग अलग कैंप्स पर रुकेगी। 22 अगस्त 2026 की अगर बात करें तो श्रीनगर से पहलगाम

काम की ओर छड़ी मुबारक को लिया जाएगा। पहलगाम लिदर नदी के किनारे इसकी पूजा होगी। 13 अगस्त 2026 जो है उस दिन छड़ी मुबारक जो है उसे पहलगाम में ही रखा जाएगा। 24 अगस्त 2026 को पहलगाम से चंदनवारी की ओर जो है छड़ी मुबारक का सफ़र तय होगा और 24 अगस्त को चंदनवारी कैंप में ही छड़ी मुबारक को रखा जाएगा। 25 अगस्त की अगर बात करें तो चंदनवारी से शीशनाग का सफ़र तय होगा। शीशनाग कैंप में 25 अगस्त की रात छड़ी मुबारक को रखा जाएगा। 26 अगस्त को शीशनाग से पंचतरणी की ओर जो है छड़ी मुबारक को आगे बढ़ाया जाएगा और 26 अगस्त को पंचतरणी कैंप में ही उसे रखा जाएगा और 27 अगस्त की अगर बात करें तो पंचतरणी में ही इसे रखा जाएगा और 28 अगस्त को पंचतरणी से पवित्र गुफा का सफ़र जो है वो तय किया जाएगा और पवित्र अमरनाथ गुफा में इसकी आखिरी पूजा होगी। यानी कि 28 अगस्त 2026 जो कि रक्षाबंधन का दिन है, सुबह गुफा में पूरे विधि विधान से पूजा होगी, जिसके साथ ही साल 2026 की अमरनाथ यात्रा पूरी तरह संपन्न हो जाएगी। और अगर वापसी की यात्रा की बात करें तो 29 अगस्त को गुफा से वापसी शुरू होगी और पहलगाम में रात का ठहराव होगा और 30 अगस्त को लिदर नदी के किनारे आखिरी पूजा और फॉर्मल विसर्जन की रस्मों के साथ छड़ी मुबारक वापस श्रीनगर लौट आएगी।

0: श्रोताओं, हालात चाहे जो भी हों, मौसम का मिजाज बदले या रास्तों की दुश्वारियां आड़े आए, बाबा के दर्शन और इस पवित्र यात्रा की हर एक गूंज आप तक पहुंचती रहेगी। प्रशासन ने भले ही आम यात्रियों के लिए यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया है, लेकिन श्रद्धा का ये सफर बिल्कुल नहीं रुकेगा। छड़ी मुबारक की हर ताज़ा अपडेट और यात्रा की हर एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। हम कोशिश करते हैं कि आप हर पल इस पवित्र यात्रा के साथ जुड़े रहें, हमारा साथ जुड़े रहें। इसलिए आप सुनते रहिए आपका ये शो और ये अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल, FM पहलगाम, DTH और न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए।
1: तेरे माने एक तरफ, तेरे निराश एक तरफ, तेरे माने एक तरफ, तेरे निराश एक तरफ, सारी दुनिया देखी है पर कैलाश एक तरफ।

जी श्रोताओं, कई सारे लोगों ने इस साल भी ये उम्मीद लगाई होती, ये सपना देखा होता कि वो अमरनाथ यात्रा करेंगे और यात्रा पर आएंगे और बाबा भोलेनाथ के दर्शन जो हैं वो प्राप्त करेंगे, लेकिन कई सारे रीजंस की वजह से रह गया या आप इस साल इस यात्रा पर नहीं आ पाए। तो आपको अपना दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, आप अगले साल कोशिश करिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि बाबा भोलेनाथ का बुलावा आपको भी आएगा। इस चीज़ के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इस चीज़ के लिए अगर आप अमरनाथ यात्रा पर आना चाहते हैं, आपको यात्रा पर आने से पहले हर साल अप्रैल के महीने में एडवांस रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। इसमें यात्री की उम्र जो है वो 13 साल से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। इस साल तो इसी तरीके की एज लिमिट रखी गई थी, लेकिन अगले साल का जो अभी हमें पता नहीं है कि क्या लिमिट रहेगी, लेकिन फ़िलहाल हम आपको बताना चाहेंगे कि 13 साल से कम की उम्र या 70 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग जो हैं वो इस यात्रा पर नहीं आ सकते हैं, और 6 हफ्ते से ज़्यादा की प्रेग्नेंट महिलाओं को ये यात्रा करने की अनुमति नहीं होती है। इसमें आपको कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट अपने साथ रखनी ज़रूरी होती है। किसी भी रजिस्ट्रेशन से पहले SASB द्वारा ऑथराइज्ड डॉक्टर से हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना मैंडेटरी होता है। आप इसके लिए ऑनलाइन भी जो है अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ साथ ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। जम्मू या श्रीनगर सेंटर्स पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद एक RFID कार्ड जो है आपको मिलता है, जिसे आपको गले में हमेशा पहनना ज़रूरी है। इसके बिना एंट्री नहीं मिलती है, तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो देखिए, आप अगले साल के लिए अगर तैयारियां करेंगे तो इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपको होनी लाजमी है। तो आपको इसके साथ साथ ये भी ख्याल रखना है कि यहाँ हिमालय में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने साथ आपको वूलन्स, थर्मल्स, वाटरप्रूफ जैकेट्स और रेनकोट्स रखने ज़रूरी होते हैं। जो स्लिपर्स है या सैंडल्स वगैरह है वो पहनकर आप यहाँ यात्रा पर नहीं जा सकते हैं। आपको अच्छी ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज़ ही इस्तेमाल करने पड़ते हैं। पूरे रास्ते में आपको लंगर जो है वो मिलते हैं, जहाँ फ्री खाना, पानी और दवाइयाँ आपको मिलती हैं। यहाँ आपको नॉर्मल सिम जो है वो काम नहीं करता है। आपको एक श्रीनगर पहुंचकर आपको एक प्रीपेड सिम जो है वो लेना होता है, या आप अपने साथ पोस्ट पेड सिम जो है वो साथ रख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे, और अगले साल आप अपनी रजिस्ट्रेशन अगर करवाना चाहते हैं तो इस तरीके से करवा सकते हैं। और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस साल नहीं तो अगले साल आपको बाबा भोलेनाथ अपने गुफा में ज़रूर बुलाएं, अपने आपको बाबा भोलेनाथ के दर्शन जो हैं वो प्राप्त हो जाएं। आप बने रहिए हमारे संग, FM बालतल, FM पहलगाम के संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियोज, जहां से आप समाचार सुनेंगे।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ। मैं हबीब रहमान। मुल्क आज अपना 80वां योम आजादी जोश व खरोश के साथ मना रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर कौमी परचम फहराकर मुल्क की योम आजादी तकरीबात की क़यादत की। वंदे मातरम पहली मरतबा लाल किले में गाया गया। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में ऐलान किया कि गरीब और मुतवस्सित तबके के कुंबों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक साल में 1 करोड़ नौजवानों को मस्नूई ज़हानत AI की तरबियत फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि अहम मादनियात के शोबे में भारत एक काबिल एतमाद आलमी शराकत दार के तौर पर उभर रहा है और कई ममालिक के साथ इस सिलसिले में समझौते किए जा रहे हैं। जनाब मोदी ने बाज़ ममालिक की जानिब से अपनी बालादस्ती जाहिर करने के लिए वसाइल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिशों पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इस चैलेंज का सामना करने के लिए भारत की आत्मनिर्भरता के जज्बे को सराहा। बैरून मुल्क मौजूद भारतीय सिफारती मिशनों ने भी हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ योम आज़ादी मनाया और इंडोनेशिया के मशरक़ी साहिली इलाके में 7.7 शिद्दत का जलजला आने से कम अज़ कम 20 अफराद हलाक हो गए। अब खबरें तफसील से। मुल्क आज 80वां योम आज़ादी मना रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में तारीखी लाल किले से योम आज़ादी की तकरीबात की क़यादत की। वहां पहुंचने पर पहली बार कौमी तराना वंदे मातरम बजाया गया, कौमी परचम लहराया गया, 21 तोपों की सलामी दी गई और फजाइया के MI-17 हेलीकॉप्टरों ने फूलों की पत्तियां बरसाईं। इस साल की तकरीबात में युवा शक्ति की अहमियत को तस्लीम और उजागर किया गया, जो 2047 में विकसित भारत बनाने में एक अहम किरदार अदा करेगी। लाल किले की फसील से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने वंदे मातरम गाए जाने को एक तारीखी लम्हा करार दिया। उन्होंने कहा है कि मुल्क नए जोश व खरोश और जज्बे के साथ तरक्की की राह पर गामजन है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: वज़ीर आज़म ने मोदी की आमद के बाद फौज की तीनों शाखों और दिल्ली पुलिस के मुश्तरक गार्ड्स ने उन्हें सलामी दी। कौमी परचम फहराने के बाद भारतीय फजाइया के 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों ने तकरीब के मकाम पर फूल बसाए। इनमें से एक हेलीकॉप्टर ने कौमी परचम जबकि दूसरे ने वंदे मातरम की अक्कासी करने वाला परचम उठा रखा था। वज़ीर आज़म की तकरीर के अख्तिताम पर NCC कैडेट्स और माई भारत के रजाकारों ने कौमी गीत वंदे मातरम गाया, जिसके बाद कौमी तराना पेश किया गया। तकरीबात में बर्री फौज, बहरिया और फदाइया के कुल 2,500 लड़के और लड़कियों पर मुश्तमिल कैडेट्स और माई भारत के रजाकारों ने शिरकत की। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 5,000 खसूसी मेहमानों ने योम आज़ादी की तकरीबात का मुशाहदा किया। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ पब्लिक इम्तहानात के लिए मुतवस्सित तबके के कुंबों और गरीब उम्मीदवारों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि ये काबिल और चोटी के असातिज़ा की रहनुमाई में मियारी तालीम की रसाई के लिए एक इनकलाबी कदम है। उन्होंने कहा है कि इस तरह कोचिंग में खर्च होने वाला मुतवस्सित तबके के कुंबों का करोड़ों रुपया बचेगा।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा

0: नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि सरकार ने फैसला किया है कि अगले एक साल के दौरान 1 करोड़ नौजवानों को एआई हुनरमंदी की तरबियत दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस तरह ये नौजवान एआई के आलमी शोबे में कायदाना किरदार अदा कर सकेंगे। जनाब मोदी ने कहा है कि मुल्क को लागत, मेयार और हुनर पर तवज्जो मरकूज करनी होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अहम मैदनियात के शोबे में भारत एक काबिल-ए-एतमाद आलमी शराकत दार के तौर पर उभर रहा है और कई ममालिक के साथ इस सिलसिले में समझौते किए जा रहे हैं। जनाब मोदी ने बाज़ ममालिक की जानिब से अपनी बालादस्ती जाहिर करने के लिए वसाइल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिशों पर भी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इस चैलेंज का सामना करने के लिए भारत की आत्मनिर्भरता के जज्बे को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि गुज़िश्ता 12 साल के दौरान मुल्क के करोड़ों अफराद ने अपने अज़्म मुसम्मम और लगन के साथ मुल्क को तरक्की की नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। मुल्क के मुख्तलिफ शोबों में हासिल की गई तरक्की का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पिछले 12 साल के दौरान दिफाई पैदावार में लगभग 4 गुना, खादी और गांव की सनअतों की पैदावार में लगभग 5 गुना, बिजली के साजो सामान की तैयारी में तकरीबन 7 गुना, रेलवे के जदीद डिब्बे बनाने की तैयारी में 21 गुना और मोबाइल फोन बनाने में तकरीबन 33 गुना का इजाफा हुआ।
0: हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए। हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया। हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि भारत ने 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क का मकसद हासिल करने के लिए पेशकदमी करते हुए ऐसे बहुत से बहरानों पर कामयाबी से काबू पाया है जिनकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने इस सिलसिले में कोविड-19 की वबा, यूक्रेन और मगरबी एशिया के तनाज़े का जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इस वक्त हर मुल्क ने अपने मफादात की तकमील और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया, लेकिन बदकिस्मती से बहरान की इस घड़ी में कुछ मुल्कों ने पेट्रोल, डीजल और कीमियाबी खाद को हथियारों के जरिए के तौर पर इस्तेमाल किया।
0: दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है। रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चीप, इतना ही नहीं भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भरते मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे कर। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह राजघाट पर महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत महात्मा गांधी के काम और नज़रियात से हमेशा तहरीक हासिल करती रहेगी। बैरूनी मुल्कों में वाक़ भारत के सफारतखानों और कौंसिल खानों से भी इस मौके पर परचम लहराने, सकाफती प्रोग्रामों और दूसरे इज्तमाही प्रोग्रामों की खबरें मौसूल हो रही हैं। सिंगापुर, चीन और हांगकांग में हज़ारों भारतीय बाशिंदे और उनके अरकान ख़ानदान योम आज़ादी की तकरीब में शामिल हुए। उन्होंने खित्ते के आवाम के साथ भारत के मजबूत ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। सिंगापुर में भारत के हाई कमिश्नर शिल्पा कांबुले ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर 2500 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। इस तकरीब के दौरान हुब्बुल वतनी के नगमे, कौमी तराना और वंदे मातरम पेश किया गया। इंडोनेशिया के फ्लोरेस इलाके के करीब आज सुबह 7.7 शिद्दत का जलजला आया जिसके नतीजे में कम से कम 20 अफराद हलाक हो गए। जलजले के 22 इमारतें मुनहदिम हो गईं, मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकयात पेश आए और बड़े पैमाने पर खौफो हरास फैल गया। 6 अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला है जबकि 2 लोग लापता हैं। जलजले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी की गई है जिसे सतह समंदर में कोई खास तब्दीली नजर न आने के बाद वापस ले लिया गया। बिजली की सप्लाई मुतासिर होने और मुआसलाती निज़ाम में खलल की वजह से बचाव और इमदादी कामों में दुश्वारी पेश आ रही है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क आज अपना 80वां योम आज़ादी जोश व खरोश के साथ मना रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर कौमी परचम फहराकर मुल्क की योम आज़ादी तकरीबात की क़यादत की। वंदे मातरम पहली मरतबा लाल किले में गाया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में ऐलान किया कि गरीब और मतवसित तबके के कुंबों के लिए ऑनलाइन कोचिंग और अगले 1 साल में 1 करोड़ नौजवानों को मस्नूई ज़हानत AI की तरबियत फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अहम मैदनियात के शोबे में भारत एक काबिल-ए-एतमाद आलमी शराकत दार

0: प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। कई देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, भारत आत्मनिर्भरता की भावना से इस चुनौती का सामना कर रहा है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 106 रन बनाए। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि AI शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है।
1: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार देश केवल संसाधन की कमी के कारण नहीं बल्कि सीमित सोच के कारण भी पिछड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत को कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ा है और ये भी सीमित सोच का परिणाम था। श्री मोदी ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया, जहां अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है।
1: हमने समुद्री तट पे समुद्र के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 7-8 वर्ष में लगभग 8 सेमीकंडक्टर संयंत्र काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 3 संयंत्रों में सेमीकंडक्टर का निर्माण हो रहा है और इस क्षेत्र में भारत की प्रगति तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाती है।
1: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुका।

0: स्वाधीनता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस के संयुक्त गार्ड ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। ध्वजारोहण के बाद भारतीय वायुसेना के दो MI-17 हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर फूलों की बारिश की। इनमें से एक हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज था और दूसरे पर वंदे मातरम लिखा हुआ ध्वज था। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद NCC कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल 2500 कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों ने लाल किले पर आयोजित समारोह में भाग लिया। इनमें PM विश्वकर्मा योजना के कारीगर, PM मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, PM स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले, भारत टैक्सी के चालक, स्वच्छ भारत मिशन के सफाई कर्मचारी और राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम से जुड़े युवा शामिल थे। लाल किले पर आयोजित समारोह का समापन आसमान में तिरंगे गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। अनुपम और आनंद के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी, इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में भी 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने राष्ट्र ध्वज फहराया और हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा यह दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनता से राष्ट्र के विकास में योगदान देने और राष्ट्र को कमजोर करने वाली शक्तियों से दूर रहने की अपील की है। पश्चिम बंगाल में मातृभूमि के प्रति गहरी श्रद्धा के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है।
2: कोलकाता में मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित बंगाल विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकता है। रेड रोड परेड में राज्य सरकार की कई झांकियां प्रदर्शित की गयी जिनमें PM सूर्य घर योजना और विकसित भारत जी राम जी योजना जैसी विभिन्न योजनाओं को दिखाया गया। राज्यपाल RN रवि ने बैरकपुर के गांधी घाट पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। कोलकाता से आकाशवाणी समाचार के लिए कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ मैं कुमार राधारमण।
0: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्य समारोह श्रीनगर के प्रसिद्ध बख्शी स्टेडियम में आयोजित किया गया।
3: स्वतंत्रता दिवस के हवाले से सबसे बड़ा समारोह श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में हुआ, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आजकल के हालात अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि आजादी के 80 साल बाद जम्मू कश्मीर का भारत का हिस्सा बनने का फैसला सही साबित हुआ है। इधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी श्रीनगर के लोक भवन में तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को बधाई दी। इस बीच जम्मू कश्मीर के सभी जिला मुख्यालयों में भी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए गए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: छत्तीसगढ़ में 80वां स्वाधीनता दिवस उत्साह, उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली।
4: रायपुर में आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से नक्सलवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक सफलता मिली है। माओवाद से मुक्त बस्तर में आज तिरंगा यात्राओं के माध्यम से स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। जो क्षेत्र कभी हिंसा और भय से प्रभावित थे, वहाँ आज शांति, विश्वास और विकास की नई सुबह हुई है। उन्होंने कहा कि बस्तर की सर्वांगीण प्रगति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। कभी माओवाद से प्रभावित रहे और अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुके राज्य के बस्तर संभाग के करीब 90 गांव ऐसे हैं जहाँ आजादी के बाद आज पहली बार स्वाधीनता दिवस पर तिरंगा फहराया गया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: केरलम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रध्वज फहराया। इसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की।
5: तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने परेड की सलामी ली। विभिन्न सशस्त्र बलों की टुकड़ियों के साथ माउंटेड पुलिस, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स तथा स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स ने इसमें हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस संदेश देने के बाद पुलिस, अग्निशमन और बचाव सेवा तथा कारागार विभाग के कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किए। कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान समारोह में वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने परेड की सलामी ली। समारोह के दौरान नौसेना के जहाजों को झंडों से सजाया गया। इडुक्की में बांधों और नौका केंद्रों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए, जिनमें पर्यटकों ने भी भाग लिया। कोवलम बीच के निकट एक निर्जन द्वीप पर तटरक्षक बल ने भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया। स्मिथी एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: वैश्विक नेताओं ने भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों का उल्लेख किया है। इजराइल के राजदूत रूवेन अजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसीना, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कोलोन, नेपाल दूतावास, फ्रांस दूतावास, ऑस्ट्रेलिया के उप उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायुक्त ने भी भारत की विरासत, विविधता, आर्थिक क्षमता और बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देते हुए शुभकामनाएं दी। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वाले और मालदीव नेशनल पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद नाजिम ने भारत के विकास और मालदीव के साथ घनिष्ठ साझेदारी की प्रशंसा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इंडोनेशिया के फ्लोरेंस क्षेत्र के पास आज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से 20 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से कई इमारतें ढह गईं। भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए हैं और 2 लापता हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हवाई हमले में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। लेबनान और इसराइल के बीच इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिण लेबनान से इजरायली सैनिकों को वापस जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल की जानी थी। गाले में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 118 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 118 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का यह विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। FM बालतल 103.7, FM पहलगाम 100.1, DTH और न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, आज यौम आज़ादी और अमरनाथ यात्रा का एक बेहद खूबसूरत संगम पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। हालांकि ट्रैक्स की रिपेयरिंग के कारण आम यात्रियों के लिए गुफा का रास्ता जो है वो अस्थायी रूप से सस्पेंड है, और जो बेस कैंप्स में रुके हमारे यात्री हैं और जो लोकल लोग हैं वो मिलकर आज़ादी और भक्ति का जश्न मना रहे हैं।

श्रोताओं, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज जम्मू कश्मीर में योम आज़ादी का दिन और अमरनाथ यात्रा का एक बेहद खूबसूरत संगम देखने को मिल रहा है। हालांकि ट्रैक्स की रिपेयरिंग के कारण आम यात्रियों के लिए गुफा का जो रास्ता है वो अस्थायी रूप से सस्पेंड हुआ है, लेकिन बेस कैंप्स में रुके सभी यात्री और लोकल लोग मिलकर आज़ादी और भक्ति का जश्न मना रहे हैं। भगवती नगर जम्मू और पांथा चौक श्रीनगर के बेस कैंप्स में सुबह फ्लैग होस्टिंग किया गया। यात्रियों और सुरक्षा बलों ने मिलकर देशभक्ति के गाने गाए। कैंप्स में भारत माता की जय और हर हर महादेव के नारे एक साथ गूंज रहे हैं। जी हाँ, आज लाल चौक का घंटाघर जो है वो पूरी तरह से ट्राई कलर लाइट से जगमगा गया है। यहाँ पर लोकल कश्मीरी भाई बहन और यात्री मिलकर आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। आज़ादी के इस मौके पर डल लेक पर स्पेशल म्यूजिकल फाउंटेन और लेजर शो चल रहा है, जहाँ पानी की बूंदों पर तिरंगा बनाया जा रहा है। जी हाँ, योम आज़ादी के दिन और अमरनाथ यात्रा के इस डबल ओकेजन पर पूरे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे और कैंप्स पर इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और जेके पुलिस ने कड़ी सुरक्षा लगाई हुई है, ताकि सभी लोग आज़ादी और भक्ति शांति से मना सकें।

आज यौम आज़ादी के मौके पर जम्मू शहर और भगवती नगर बेस कैंप का माहौल बेहद एनर्जेटिक रहा है। जम्मू के एमए स्टेडियम में स्टेट लेवल इंडिपेंडेंस डे फंक्शन और फ्लैग होस्टिंग पूरी धूमधाम से संपन्न हुआ है। पूरे जम्मू शहर और तवी रिवर फ्रंट को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया है। जी हाँ श्रोताओं, जम्मू डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक अब 17 अगस्त 2026 से पुंछ के लिए बुद्धा अमरनाथ यात्रा की शुरुआत भगवती नगर बेस कैंप से ही होने वाली है, जिसके लिए सिक्योरिटी और तैयारियां बिल्कुल तैयार है। जम्मू में आज धूप खिली हुई है और टेम्परेचर लगभग 32 डिग्री से 33 डिग्री के बीच है, जिससे थोड़ी उमस बनी हुई है, लेकिन शाम तक बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना भी है। आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं FM बालतल, FM पहलगाम, DTH और न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप, आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। बने रहिए हमारे संग।

श्रोताओं, जैसा कि हमने आपको बताया कि 17 अगस्त 2026 से पुंछ के लिए बुद्ध अमरनाथ यात्रा की शुरुआत भगवती नगर बेस कैंप से होने वाली है, जिसके लिए सिक्योरिटी और तैयारियां बिल्कुल तैयार है। जी हाँ, अगर हम श्री बाबा बुद्ध अमरनाथ यात्रा के हवाले से बात करें तो जम्मू डिवीजन के पुंछ डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक बेहद प्राचीन और पवित्र तीर्थ यात्रा है। इस साल 2026 की जो यात्रा है वो 17 अगस्त से शुरू हो रही है, इस बाबा बुद्ध अमरनाथ यात्रा की। और इस साल बुद्ध अमरनाथ यात्रा का जो पहला बैच है वो 16 अगस्त को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना होगा और 17 अगस्त से शुरू होगी ये यात्रा। पहली जो यात्रा है 17 अगस्त से शुरू होगी इसकी। हाँ हाँ, आपको बता दें कि ये यात्रा लगभग 12 से 13 दिन चलेगी और 28 अगस्त 2026 यानी कि रक्षाबंधन को पावन छड़ी यात्रा के साथ रस्मी रूप से समाप्त होगी। ये जो मंदिर है ये पुंछ शहर के लगभग 23 से 25 किलोमीटर दूर मंडी तहसील के राजपुरा गांव में स्थित है। ये समंदर तल से लगभग 4,600 फीट की ऊंचाई पर है। कश्मीर के अमरनाथ की तरह यहाँ बर्फ का शिवलिंग तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ एक सफेद पत्थर का शिवलिंग है जो सदियों पुराना है। मंदिर के बिल्कुल पास से पुलसत्ता नदी बहती है। परंपरा के अनुसार यात्री मंदिर में प्रवेश करने से पहले इस नदी में स्नान करते हैं। आपको बता दें कि इस यात्रा का जो रास्ता है वो जम्मू से शुरू होता है, भगवती नगर बेस कैंप से आप ये यात्रा शुरू करते हैं और इसके बाद आप पहुंचते हैं अखनूर। जी हाँ, अखनूर से आगे सफ़र करते हैं और पहुंचते हैं सुंदरबानी। सुंदरबानी से आगे चलकर आपको मिलता है नौशहरा। नौशहरा से आगे आप राजौरी पहुंचते हैं और राजौरी से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप पहुँचते हैं बिम्बर गली। बिम्बर गली से आगे पहुंचकर आप पुंछ पहुंच जाते हैं और पुंछ से आगे आपको मिलता है मंडी यानी कि बुद्धा अमरनाथ मंदिर। जम्मू से मंदिर तक लगभग 290 किलोमीटर का रास्ता है, जिसे बस या प्राइवेट गाड़ियों के जरिए तय किया जाता है। आपको

बता दें कि सभी यात्रा गाड़ियां जो हैं उन पर RFID टैग्स लगाए जा रहे हैं ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके। पूरे रास्ते और कैंप्स पर CCTV कैमरास डिप्लॉय किए गए हैं। सुरक्षा से सभी यात्रियों को केवल सिक्योरिटी एस्कॉर्ट के साथ ही कॉन्वॉयज में ही आगे बढ़ने की अनुमति होगी। अकेले गाड़ियों को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं मिल सकती है। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा पूरे रास्ते जैसे भिंबर गली में यात्रियों के लिए 24 घंटे फ्री भंडारे, लंगर्स और रुकने के इंतजाम किए गए हैं। ये हम बात कर रहे हैं जी हाँ, बाबा बुद्धा अमरनाथ यात्रा की, जो आप 17 अगस्त से जो शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक ये जो यात्रा है ये चलेगी। तो यहाँ पर आप बने रहिए हमारे संग, FM बालतल, FM पहलगाम के संग।

आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। FM बालतल 103.7, FM पहलगाम 100.1, DTH और न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, जैसा कि अभी हमने आपको कहा कि 17 अगस्त से बुद्ध अमरनाथ यात्रा की जो यात्रा है वो शुरू हो रही है, और आपको बता दें कि श्री बाबा बुद्ध अमरनाथ मंदिर की पुरानी कथा और इतिहास बेहद दिलचस्प और पवित्र है। ये मंदिर सदियों पुराना है और इसका गहरा रिश्ता रावण के दादा पुलस्ता ऋषि और रानी चंद्रिका से है। पुराणिक मान्यताओं के मुताबिक त्रेता युग में रावण के दादा महर्षि पुलस्ता ने इस पवित्र स्थान पर भगवान शिव की बरसों तक कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें यहां दर्शन दिए थे। मंदिर के पास बहती हुई पुलस्ता नदी का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। यात्री आज भी इस नदी में स्नान करके दर्शन के लिए जाते हैं। मंदिर का नाम बुद्ध अमरनाथ कैसे पड़ा, इसके पीछे रानी चंद्रिका की एक बेहद बाव कहानी है। पुराने समय में लॉरन वादी पर रानी चंद्रिका नाम की एक बेहद धार्मिक रानी राज करती थी। वो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो वादी स्थित स्वामी अमरनाथ गुफा कश्मीर जाकर बाबा बर्फानी के दर्शन करें, लेकिन उनके बुढ़ापे और शारीरिक कमजोरी के कारण उनका वहां जाना बिल्कुल असंभव था। रानी इस बात से बेहद उदास हो गई और उन्होंने बिना खाए पिए रोते हुए भोलेनाथ को पुकारना शुरू किया। उनकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव एक बुढ़े साधु के रूप जो है धारण करके उनके सामने प्रकट हुए। भोलेनाथ ने रानी से कहा, तुम्हें इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं खुद यहाँ इस चकमक पत्थर के रूप में स्थित हो रहा हूँ। तभी से इस मंदिर का नाम बुढ़ा अमरनाथ पड़ गया, जिसका मतलब है बुढ़े रूप में अमरनाथ।

एफएम बाल्टलिक 103.7 एफएम पहलगाम 100.1 डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप पर आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। श्रोताओं, श्रीनगर में अभी टेम्परेचर लगभग 21 डिग्री से 26 डिग्री के बीच है, जबकि जम्मू प्लेन्स में धूप और बादलों की आवाजाही के साथ टेम्परेचर लगभग 33 डिग्री बना हुआ है, जहां ह्यूमिडिटी यानी कि उमस जो है वो काफी ज्यादा है। मौसम विभाग ने कल यानी कि 16 अगस्त से जम्मू डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट्स जैसे रेसी, रामबन, पुंछ, राजौरी और उधमपुर में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर शूटिंग स्टोन्स और पत्थर गिरने का खतरा भी है, इसलिए यात्रियों को बताया गया है कि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सफर करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से जो है राबता कर लें और रास्ते के बारे में ज़रूर कंफर्म कर लें। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे, और अगर आप भी जो है सफ़र कर रहे हैं जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू, तो कल आप जो है पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राबता करेंगे और उसके बाद ही सफ़र जो है वो शुरू करेंगे।

आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। FM बालतल 103.7, FM पहलगाम 100.1, DTH और न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालथल, एफएम पहलगाम, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि खराब मौसम और रास्ते की मरम्मत के चलते आम यात्रियों के लिए यात्रा को 9 अगस्त 2026 से रोक दिया गया है, लेकिन महंत दीपेंद्र गिरी जी की देख रेख में छड़ी मुबारक की पारंपरिक रस्में अपने तय वक्त के मुताबिक चल रही है। यात्रा रुकने से पहले इस साल 4,80,000 से ज्यादा यात्रियों ने बाबा बर्फानी के सफल दर्शन किए। और आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा 2026 की छड़ी मुबारक की यात्रा 28 अगस्त 2026 को पवित्र गुफा पर खत्म होगी, जिससे इस साल की 57 दिनों की यात्रा का रस्मी तौर पर समापन होगा।

श्रोताओं, छड़ी मुबारक की अमरनाथ यात्रा में सबसे ज़्यादा श्रद्धा और कानूनी धार्मिक अहमियत है। इसके बिना अमरनाथ यात्रा पूरी नहीं होती। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक छड़ी मुबारक को भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र लाठी में स्वयं भोलेनाथ की शक्ति और आशीर्वाद मौजूद होता है। जब ये यात्रा पर आगे बढ़ती है तो ये पूरे रास्ते को पवित्र करती है और यात्रियों की रक्षा करती है। अमरनाथ यात्रा तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक छड़ी मुबारक पवित्र गुफा में नहीं पहुंच जाती। श्रवण पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन के दिन जब महंत दीपेंद्र गिरी जी इस छड़ी को लेकर गुफा में आखिरी पूजन करते हैं, तभी अमरनाथ यात्रा का रस्मी समापन होता है। कहते हैं पुराने वक्त में राक्षस यात्रियों को परेशान करते थे। तब ऋषि बृंगेश ने भगवान शिव से मदद मांगी। शिव जी ने उन्हें अपनी एक मेस दी। तभी से दशनामी सन्यासी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ चलने वाले साधु पूरे रास्ते भजन, आरती और ध्यान करते हैं। जब छड़ी मुबारक श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा से रवाना होकर पहलगाम के रास्ते गुफा तक जाती है तो रास्ते में आने वाले सभी धर्मों के लोग इसका स्वागत करते हैं। कश्मीर में ये यात्रा भाईचारे और शांति का एक बहुत बड़ा प्रतीक मानी जाती है।

श्रोताओं, महंत दीपेंद्र गिरी जी अमरनाथ यात्रा के सबसे मुख्य धार्मिक व्यक्ति हैं। जी हाँ, महंत जी श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा के श्री महंत हैं और वही इस पवित्र लाठी के आधिकारिक कस्टोडियन हैं। आपको बता दें कि पूरी यात्रा के दौरान सभी श्रद्धालु और साधु उन्हीं के पीछे और उनकी देखरेख में चलते हैं। गुफा में आखिरी पूजन भी उन्हीं के हाथों से पूरी होती है। उन्हें भगवान शिव का सच्चा प्रतिनिधि माना जाता है, जो सदियों पुरानी इस परंपरा को पूरी निष्ठा से जिंदा रखे हुए हैं। छड़ी मुबारक के साथ चलने वाले साधुओं की यात्रा में एक बेहद अहम और पवित्र भूमिका होती है। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि पुराने जमाने में साधु ही इस यात्रा की सुरक्षा करते थे। आज भी साधु इस परंपरा को बनाए हुए हैं। ये साधु पूरे रास्ते वैदिक मंत्रों का जाप, आरती, सांखनाद और भजन कीर्तन करते हुए चलते हैं। उनकी उपस्थिति से पूरे पहलगाम रास्ते का माहौल आध्यात्मिक बन जाता है। आपको बता दें कि छड़ी मुबारक के मुख्य प्रोसेशन में शामिल होने के लिए साधुओं और सिविल सोसाइटी के आम लोगों को अलग से रजिस्टर होना पड़ता है। हर साल महंत दीपेंद्र गिरी जी और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के सहयोग से साधुओं और आम लोगों को रजिस्टर होने की एडवाइजरी जो है वो जारी की जाती है। जो लोग इस खास छड़ी के साथ पैदल चलना चाहते हैं, उन्हें श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा में अपना नाम और आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट करना होता है। किसी भी आम यात्री की तरह छड़ी मुबारक के साथ जाने के लिए भी ऑथोराइज्ड डॉक्टर से बनवाया हुआ कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट यानी कि CHC मैंडेटरी होता है, क्योंकि रास्ता बेहद कठिन और ऊंचाई पर है। सुरक्षा और मौसम को देखते हुए सिर्फ लिमिटेड संख्या में ही साधुओं और श्रद्धालुओं को छड़ी के साथ आगे बढ़ने की इजाजत मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अगर कोई श्रद्धालु अमरनाथ गुफा तक नहीं जा पाता और वो सिर्फ छड़ी मुबारक के दर्शन कर लेता है तो उसे पूरी अमरनाथ यात्रा का फल मिलता है। इसकी वजह यह है कि छड़ी मुबारक को सिर्फ एक लाठी नहीं बल्कि भगवान शिव की शक्ति का स्वरूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ स्वयं इस छड़ी के रूप में यात्रा करते हैं। ये छड़ी गुफा से पहले ही चलना शुरू करती है और रास्ते में आने वाले हर मंदिर, जैसे शंकराचार्य मंदिर हो, शारिका भवानी हो, की ऊर्जा को समेट कर आगे बढ़ती है। जो लोग खराब मौसम या सेहत की वजह से यात्रा नहीं कर पाए या गुफा नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए दशनामी अखाड़ा या रास्ते में छड़ी मुबारक के माथा टेकना उतना ही पवित्र है जितना कि गुफा में बाबा बर्फानी के आगे सर चुकाना। तो मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अगर इस छड़ी मुबारक के दर्शन कर लेते हैं तो माना जाता है कि जैसे कि आपने गुफा में जाकर माथा टेका हो। तो आप बने रहिए हमारे संग FM बालतल, FM पहलगाम के संग। आप तक हम क्षण क्षण की सूचना पहुंचाते रहेंगे।

श्रोताओं, आज श्रीनगर के श्री अमरेश्वर मंदिर दशनामी अखाड़ा में छड़ी मुबारक की स्थापना की रस्म पूरी की जा रही है। महंत दीपेंद्र गिरी जी की देखरेख में सुबह मुख्य पूजन और आरती की गई, जहां पवित्र मेज को आम दर्शन और आगे की रस्मों के लिए तैयार किया गया। कल 16 अगस्त को छड़ी मुबारक दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में ही विराजमान रहेगी। कल देश भर से आए साधु और सन्यासी दशनामी अखाड़ा पहुंचेंगे और पवित्र छड़ी के दर्शन करेंगे। इस दौरान अखाड़ा में अखंड धुनी और भजन कीर्तन का सिलसिला चलेगा। महंत जी और समिति के लोग 17 अगस्त को होने वाले मुख्य छड़ी पूजन यानी कि नाग पंचमी के दिन और 22 अगस्त से शुरू होने वाली पैदल यात्रा की तैयारियों को आखिरी रूप देंगे। जी हाँ, ये शेड्यूल है आज और कल का छड़ी मुबारक का। आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं FM बालतल, FM पहलगाम, DTH और न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप, आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए।

आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब आरती सुनते हैं।

धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी शिव भक्तों का बाबा अमरनाथ बर्फानी जी के इस पावन मंगल अद्भुत धाम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। बंधुओं, आप सभी बड़े ही पुण्यकर्मी हैं जो नित्य बाबा जी के मंगल धाम के बाबा जी की प्रातःकालीन एवं सायंकालीन मंगल आरती के दर्शन कर रहे हैं। MH1 मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो हो। ये जो मन है यही हमें बंधन में डालता है और मन ही जो है हमें मोक्ष दिलाता है। बंधुओं, हम जितना मर्जी कठोर तप कर लें, हम दिन रात एक करके कठोर तप भी कर लें, तब भी कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि बंधुओं, जब तक ये मन जो है स्थिर नहीं है, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। बंधुओं, हमें इस मन को ही नियंत्रण में लाना है। मन को नियंत्रण में लाने का तरीका क्या है, मार्ग क्या है, हमें अपने इच्छाओं पर जो है नियंत्रण करना है, हमें अपनी इच्छाओं को बांधना है। बंधुओं, जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करेंगे और अपने जो आहार हमारा हम भोजन करते हैं उसमें भी हम नियंत्रण करेंगे, निद्रा में नियंत्रण करेंगे, तभी जे जो हम मन है जे हमारे नियंत्रण में रह सकता है। बंधुओं, चंचल मन कैसा है, जैसे हवा के भेग में हम एक दीपक को जला देते हैं तो वो मन की तरह वो चंचल दीपक जो है वो फड़फड़ाता रहता है। वही दीपक हम किसी शून्य स्थान पर, हवा से रहित स्थान पर जलाएंगे तो वो स्थिर रहेगा। बंधुओं, ऐसे ही हमने अपने मन को स्थिर करना है। जब हमारा मन स्थिर हो जाएगा, परमात्मा में हमारा ध्यान लगेगा, बंधुओं, वो एक क्षण भी जो है वो हजारों वर्षों के तप के समान जो है हमारा तप है। बंधुओं, इस मन को ही अपने नियंत्रण में करें और बाबा के चरणों में ध्यान लगाएं, आपका अवश्य ही कल्याण होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए इन्हीं विचारों को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में धारण करते हुए आज की सायंकालीन आरती में प्रवेश करते हैं। बोलिए।

0: हरे हर हर स्वामी
1: मणवांचित फल पावे हरिओम हर हर हर महादेव ओम जय शिव ओम कारा मन भज शिव ओम कारा मन रत

सभी ताली का वादन करते हुए आनंद मन से बाबा बर्फानी का ध्यान करते हुए सभी हमारे साथ भजन का गायन करेंगे। बोलिए शंकर।

0: शान्तिः
1: सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति सुशान्तिरवावतु अस्तु अमृताभिषेकः अस्तु अस्तु अमृताभिषेकः बोलिए शंकर भगवान की जय। बाबा आप सभी का कल्याण करें, कृपा करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलिए शंकर भगवान की, धर्म की
0: जय हो,
1: अधर्म का
0: विनाश हो,
1: प्राणियों में
0: सद्भावना हो,
1: विश्व का
0: कल्याण हो,
1: भारत वर्ष
0: महान हो,
1: सत्य सनातन धर्म की
0: जय हो,
1: गंगा मैया की
0: जय हो,
1: सब तीर्थों की
0: जय हो,
1: गुरु महाराज की
0: जय हो,
1: संत समाज की
0: जय हो,
1: मात पिता की
0: जय हो,
1: कुल देवी देवताओं की
0: जय हो,
1: गौ ब्राह्मण की
0: जय हो,
1: भारत माता की
0: जय हो,
1: भारत माता की
0: जय हो,
1: भारत माता की
0: जय हो,
1: राम चंद्र भगवान
0: की जय हो,
1: शंकर भगवान की
0: जय हो,
1: शिव के गणों की
0: जय हो,
1: शिव के भक्तों की
0: जय हो,
1: आज के आनंद की
0: जय हो,
1: बाबा बर्फानी की
0: जय हो,
1: अमरनाथ स्वामी की
0: जय हो,
1: मात भवानी की
0: जय हो,
1: नमः पार्वती पते
0: हर हर हर
1: महादेव। शिव शंभु ओम निरावलंब शिव मामलंबम विभक्तदंबम मदीय पापाचलपादि प्रवर्तताम महादेव। शिव शंभु ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम
0: पुंडरीकाक्ष
1: मंगलायतनो हरि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे
0: सन्तोष
1: सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदिति भवेत्। ॐ यस्य समृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतम्।

0: पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले बाबा आप सभी का कल्याण करें, आपके परिवार का कल्याण करें, समस्त देश
1: शाम के 6 बज रहे हैं। ये विशेष प्रसारण आप यात्रा 2026 के सिलसिले में आकाशवाणी के FM बालतल से सुन रहे थे। FM 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा 2026 के इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ थे हमारे सहायक इंजीनियर्स मंजूर अहमद नजार, फारूक अहमद डार और उनके साथ है मोहम्मद सलीम। मैं आपकी उद्घोष का फरजाना और इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री वसीम फारूक। इसके साथ ही हमारी आज की ये सभा यहीं पे समाप्त होती है। प्रातः 7 बजे अमरनाथ यात्रा का विशेष प्रसारण लिए आपकी खिदमत में दोबारा उपस्थित होंगे। जब तक के लिए शुभ यात्रा, शुभ रात्रि, जय हिंद।

गौरी पूजन के लिए सीता सखियों के साथ जाती हैं और फूलमाला चढ़ाते हुए माता के चरणों को धोती हैं, पोछती हैं, साथ ही शीश नवाते हुए अपनी बात कहती हैं।

प्रस्तुत है धनुष यज्ञ का कार्यक्रम, जहां बड़े बड़े योद्धा, राजा, सूर्यवीर, बाणासुर जैसे योद्धा धनुष को तोड़ने के लिए अपने अपने बल का प्रयोग करते हैं। उसी दरबार में श्री राम लक्ष्मण अपने गुरु के साथ उपस्थित हैं। बारी बारी से सूर्यवीरों के प्रयास करने पर भी धनुष नहीं उठा। तत्पश्चात भगवान श्री राम अपने गुरु का चरण छूते हुए प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। धनुष दो टूक हो जाता है। धनुष टूटने की आवाज सुनते ही परशुराम जी की तपस्या भंग होती है और उठकर जनक की सभा में पहुंचते हैं। परशुराम जी को गुस्से में देख भगवान राम जी हाथ जोड़ अपनी सारी बातें कुछ इस प्रकार बताते हैं।

स्वयंवर सभा से परशुराम जी विदा लेते हैं और सीता सखियों सहित जयमाल के लिए प्रस्थान करती हैं।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: ये आकाशवाणी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम।
1: पिछली कड़ी में आप सुन चुके हैं कि किस तरह श्री राम के परम भक्त हनुमान लंका के अशोक वाटिका तक पहुंचते हैं। आप लंका दहन का पूरा प्रसंग भी सुन चुके हैं। इस बीच राम और उनकी सेना समुद्र पार कर लंका पहुंचती है और राक्षस राज रावण की असुर सेना के विरुद्ध युद्ध के लिए मोर्चा संभालती है। अब सुनिए आगे। इस कड़ी के लेखक हैं डॉ

0: अंगद द्वारा रावण के सब समाचार पाकर श्री राम ने अपने सभी मंत्रियों को पास बुलाया और लंका पर आक्रमण की योजना बनाई। वानरों की सेना के 4 दल बनाए गए और इसके लिए उपयुक्त सेनापति भी नियुक्त किए गए। श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करते हुए वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। दूसरी ओर लंका में भी बड़ा कोलाहल मच गया। अहंकारी रावण ने सारा समाचार सुनकर कहा,
1: इन बंदरों की ढिटाई तो देखो, मरने चले आई। राक्षसों की सेना को बुलाओ। ये बंदर काल से प्रेरित होकर ही यहां चले आए हैं। मेरे राक्षस वीर भी न जाने कब से भूखे हैं। लगता है गृह बैठे यहां अरविंद दीना। सुबह तो सकल चारों दिशे जाऊ, धर धर भालु की सब खाऊ।
2: श्री रामचंद्र महाराज की जय। श्री रामचंद्र महाराज की जय।
0: भयानक संग्राम होने लगा। धरी कुधर खंड प्रचंड मरकट, भालू गढ़ पर डा रही, झपट ही चरण गही पटक मही, भज चलत बहुरी पचा रही। वानरों के आतंक से राक्षसों के समूह उसी भांति भाग चले जैसे प्रबल वायु के चलने से बादलों के समूह बिखर जाते हैं। लंकापुरी में हाहाकार मच गया। जब रावण ने अपनी सेना को विचलित होते हुए सुना तो भागते हुए योद्धाओं को लौटाते हुए उसने क्रोध से कहा,
1: सुनो वीर, सुनो जौरन विमुख, सुना मैं काना, सो मैं हतव कराल कृपाना, सर्व सुखाय भोग करी नाना, समर भूमि भय बल्लव प्राणा।
3: सचमुच हमें समर भूमि से नहीं भागना चाहिए, रण में लड़ने में ही वीर की शोभा है।
4: शत्रु को ललकारे और वानर भालुओं से भिड़े।
3: कहाँ है अंगद और हनुमान?
4: नल नील और दुर्विंद कहाँ है?
3: श्री रघुवीर की
4: जय।
3: श्री रघुवीर की
4: जय।
3: वो देखो, हनुमान लंका के गढ़ पर कूद कर पहुंचे। अरे एक पर्वत लेकर मेघनाथ पर दौड़े।
4: अरे पंजम रथ सारथी निभाता, ताही हृदय महूं मानस हिलाता।
3: उधर देखो, उधर देखो, उधर गढ़ पर हनुमान को अकेले जानकर अंगद भी उतर कर गढ़ पर चढ़ गए।
5: दोनों ही हमारी सेना के विरुद्ध क्रोध से लड़ने लगे हैं।
6: हमारी वानर सेना कितनी विकट है। अंगद और हनुमान दोनों ही दुर्ग में प्रवेश कर गए हैं। दोनों लंका को ध्वंस करते हुए ऐसे शोभित हैं जैसे दो मंदराचल पर्वत समुद्र को मथ रहे हैं।

0: इस भयानक संग्राम की कोई तुलना नहीं थी। द्वौदल प्रबल पचारी पचारी लरत सुभट नहीं मा नहीं हारी। राक्षसों के दो सेनापतियों अकंप और अतिकाय ने अपनी सेना को विचलित देखकर माया की। भय निमिख मह अति अंधियारा, वृष्टि होई रुधिरो पल धारा। घने अंधकार को देखकर बानरों की सेना में खलबली मच गई। वे जहां तहां पुकारने लगे, हे राम बचाओ, हे रघुवीर रक्षा करो। तब कृपालु श्री राम ने हंसकर धनुष चढ़ाकर शीघ्र ही अग्निबाण चलाया। उससे तुरंत प्रकाश हो गया। प्रकाश होते ही भालु बलिमुख पाई प्रकाशा, धाये हरख विगत श्रमत्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाँक सुनत रजनी चर भाजे। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई। गरजहि भाली बली मुख, रिपु दल बल बिचलाई। इधर तो श्री राम जी की सेना राक्षसों का विनाश कर रही थी, और वहां दसानन सचिव हंकारे, सब सन कहे सी सुभट जे मारे।
1: मंत्रियों, बंदरों ने आधी सेना का संहार कर डाला। अब कहो क्या उपाय करना चाहिए। माल्यवंत
2: जी,
1: आप वयोवृद्ध और हमारे श्रेष्ठ मंत्री हैं, आप ही कुछ उपाय सुझाइए।
3: सुनहु तात कछु मोर सिखावन, जब ते तुम सीता हरि आनी, असगुन होई न जाहि बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख कहुन सुख पायो।
1: क्या कहा?
3: तुम नहीं जानते लंकेश, स्वयं कृपालु भगवान पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, जो स्वयं काल रूप हैं, जो दुष्ट रूपी वनों को जलाने में अग्नि की भांति हैं, जो गुणों के धाम और ज्ञान धन हैं, शिव और ब्रह्मा भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे कैसे विरोध किया जा सकता है?
1: मालिवंत,
3: इसीलिए अपनी शत्रुता छोड़कर उन्हें जानकी जी सौंप दो और कृपा निधि परम स्नेही श्री राम का भजन करो।
1: अरे भागे, तू अपना मुंह काला करके यहां से निकल जा। तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो मैं स्वयं तुझे मार डालता। जा, अब मेरी आंखों को अपना काला मुंह न दिखला।
3: लगता है तू श्री राम के हाथों अवश्य ही मरना चाहता है। चला जाता हूं, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है।
4: पिताजी, प्रातःकाल मेरा चमत्कार देखिएगा। अधिक क्या कहूं, बहुत कुछ करूंगा।
1: तो ठीक कह रहा है मेघनाथ, मेरे मन में भरोसा है कि तू जो कह रहा है उसे करेगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है।
5: घोषणाधीश दोनों भाई कहां हैं, जो समस्त लोकों में धनुर्धर प्रसिद्ध हैं? नल, नील, दिवित, सुग्रीव और अत्यंत बली अंगद और हनुमान कहां है? अपने भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहां है? आज मैं हट पूर्वक उसे और सबको मारूंगा।
0: मेघनाद ने बड़ा विकराल युद्ध किया। उसके द्वारा अपनी सेना को विकल देखकर पवन पुत्र हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े जैसे स्वयं काल दौड़ता है। उन्होंने एक बड़ा भारी पर्वत उखाड़ लिया और मेघनाद पर डाल दिया। पर पहाड़ गिरते देखकर मेघनाद आकाश में चला गया। उसके रथ, सारथी, घोड़े सब नष्ट हो गए। रघुपति निकट गयो घननादा, नाना भांति करे सी दुर्बाधा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक ही प्रभु काटे निवारे। देख प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना।

0: लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा क्रोध से भरे हुए एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। लक्ष्मण जी के प्रहारों से मेघनाथ प्राण मात्र शेष रह गया। प्राण संकट में देख उसने वीर घातिनी छांडे सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। शक्ति के लगने से श्री लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई। हनुमान उन्हें श्री राम के निकट ले आए। छोटे भाई को मूर्छित देखकर प्रभु राम बहुत दुखी हुए। जांबवान के परामर्श से हनुमान लंका गए और वैद्य सुषेण को ले आए। वैद्य ने श्री राम के चरणों में माथा नवाकर हनुमान को पर्वत से औषधि लाने के लिए भेजा। राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाखी। मार्ग में रावण द्वारा प्रेरित काल नेम का वध करते हुए हनुमान पर्वत पर पहुंचे। वहां औषध को न पहचानने के कारण पर्वत को ही उखाड़कर आकाश मार्ग से चले। जब अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंचे तब देखा भरत विशाल अति निशिचर मन अनुमानी, बिनु फर सायक मारेऊ चाप श्रवण लगितानी।
1: श्री राम
2: जिस भाग्य ने मुझे श्री राम जी से विमुख कर दिया है उसी ने यह भयानक दुख दिया है। यदि मनसा वाचा कर्मणा प्रभु राम के चरणों में मेरा निष्कपट प्रेम हो तो ये वानर पीड़ा से मुक्त हो जाए, इसकी मूर्छा दूर हो जाए।
1: कुशलाधीश
2: हेतात लक्ष्मण और माता जानकी सहित सुख निधान राम का कुशल समाचार सुनाओ।
1: वनवास की प्रसंग में जब श्री राम जी लक्ष्मण जी तथा माता जानकी के साथ पंचवटी में विश्राम कर रहे थे तो षड्यंत्र रचकर लंकापति रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। फलस्वरूप वानर आदि जातियों की सेना सजाकर श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी। उसी युद्ध में मेघनाथ की शक्ति द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। मैं उन्हीं के लिए हिमशिखर से औषधि लेने गया था। प्रातःकाल होने से पूर्व मेरा पहुंचना आवश्यक था।
2: हाँ दैव, मेरा जन्म ही क्यों हुआ, मैं प्रभु के एक काम भी नहीं आया। हे तात, तुम्हें जाने में देर होगी और प्रातः काल होते ही सारा कार्य बिगड़ जाएगा। मेरे बाण पर तुम पर्वत सहित चढ़ो, मैं तुम्हें कृपा निधान राम के पास भेज दूंगा।
1: नहीं प्रभु, आपका प्रताप हृदय में रखकर मैं शीघ्र ही जाऊंगा। आप मेरा प्रणाम स्वीकारें।

आधी रात बीत चुकी, अभी तक हनुमान नहीं आए। हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदैव से ही कोमल रहा है। मेरे लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में शीत कृष्ण और तीक्ष्ण वायु सहन की। हाँ, वैसा प्रेम अब कहाँ है। मेरे विकल वचनों को सुनकर तुम क्यों नहीं उठते, क्यों नहीं उठते। जो जनते बन बंधु बिछोहू, पिता वचन मन तेऊ नहीं हो। सुत भित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बार ही बारा। अस बिचारी जिए जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनि करिबर कर हीना। असम जीवन बंधु बिनु तोही, जौ जल देव जियावै मोही। हाय हाय, मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा। मेरा कठोर हृदय तुम्हारे शोक को कैसे सहन कर पाएगा। नीच जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण अधारा। सौ पेसी मोही तुम्हें ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह देहु तेह जाई, उठ किन मोहे सिखावहु भाई। हाय।

0: कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, फिर नींद से जागो भाई, वहां अपनी सेना नष्ट हुई जा रही है और तुम्हें नींद पे आ रही है, उठो कुंभकर्ण।
1: भाई मुझे कैसे जगाया, तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं?
0: कुंभकर्ण, मारीच की सहायता से मैं अयोध्या के वनवासी राजकुमार राम की पत्नी सीता को हर लाया था। उसी ने वानर सेना लेकर लंका पर चढ़ाई की है। हे भाई, वानरों ने सब राक्षस मार डाले हैं, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर दिया है। दुर्मुख, देवांतक, मनुष्यों को खाने वाली अतिकाय, अकंपन और महोदराज सभी वीर युद्ध में मारे गए हैं।
1: मूर्ख, जगत जननी का हरण कर तू अपना कल्याण चाहता है, राक्षस राज ये तूने अच्छा नहीं किया। अब आकर मुझे किस लिए जगाया है? भाई अब भी तू अपना अभिमान छोड़ दे, श्री राम का भजन करे तो तेरा कल्याण होगा। श्री हनुमान जैसे वीर जिसके सेवक हैं, क्या वे श्री रघुनाथ सामान्य मनुष्य है?
0: कुंभकर्ण, ये तुम क्या कह रहे हो?
1: भाई बहुत बुरा काम किया तूने, पहले ही आकर अपनी बात मुझे क्यों ना सुनाई? तूने तो उस देवता का विरोध किया है जिसके शिव ब्रह्मादि देवता सेवक हैं। अच्छा तो अब तू अंतिम बार मुझसे भेंट कर ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं और तीनों तापों के दूर करने वाले श्याम शरीर और कमल नयन श्री राम के दर्शन करूं।
0: कुंभकर्ण, अब ये बेकार की बातें छोड़कर रक्षा का कोई उपाय करो।
1: अच्छा राक्षस राज, पहले मेरे लिए आहार लाओ। मदिरा के घट और भैंसों का समूह कहाँ है? आहार लेने के बाद मैं सेना लेकर राम से लड़ने जाऊंगा। ये सामने से कौन चला रहा है?
2: मैं आपका छोटा भाई विभीषण आपके चरणों में प्रणाम करता
1: हूं। प्रसन्न रहो, कहो कैसे हो?
2: तात, लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा, तहीं गलानी रघुपति पही आयु, देख दीन प्रभु के मन भायु।
1: सुन सुत, भयउ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निश्चर कुल भूषण, बंधु वंश ते कीन उजागर, भजे उ राम शोभा सुख सागर। तू मनसा वाचा कर्मणा प्रभु का भजन कर, रावण की बात पर मैं भी काल के वश हो गया हूं, मुझे अपना पराया नहीं सूझ रहा है। अच्छा अब तू जा और मैं भी चला।
3: सबको खा जाऊंगा।
4: अरे दुष्ट कुंभकर्ण, ठहर, मैं इस वार से तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूं।
0: अरे ये क्या, ये तो भाई कुंभकर्ण का सिर जान पड़ता है। हाँ भाई कुंभकर्ण, तुम भी रणक्षेत्र में मरण को प्राप्त हुए।
5: हे पिता, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी अपनी प्रशंसा क्या करूं। मैंने अपने इष्ट देव से जो शक्ति और रथ प्राप्त किया है वो अब तक मैंने आपको नहीं दिखलाया, कल देखिएगा।
6: प्रभात होते ही मेघनाद युद्ध भूमि में जा डटा। उसने विविध भयानक युद्ध किया। मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों से छा दिया। श्री राम की सेना के सभी वीर व्याकुल हो गए। लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण आदि की देह को बाणों से छलनी बनाकर मेघनाद ने श्री राम जी पर आक्रमण किया। उसने बाणों के नागपाश में श्री राम जी को जकड़ लिया। श्री राम भी नट की भांति अनेक प्रकार से कौतुक करने लगे। जब जांबवान ने मेघनाद को ललकारा, मेघनाद ने एक पैना त्रिशूल चलाया। जांबवान ने उसे बीच में ही पकड़कर मेघनाद की छाती में मारा। वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। इधर देवर्षि नारद ने गरुड़ जी को भेजा। उसने श्री राम के शरीर में लिपटे हुए सभी माया सर्पों को खा लिया। वानर के समूह भी माया से मुक्त होकर हर्षित हो गए। जब मेघनाद मूर्छा से जागा तो पिता को देखकर उसे बड़ी लज्जा आई। वो विजय यज्ञ करने की इच्छा से एक पहाड़ की कंदरा में चला गया। तभी विभीषण ने श्री रामचंद्र जी से आकर कहा,
7: हे अतुल बल वाले प्रभु, मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। यदि ये यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो फिर उसे प्रभु शीघ्र ही जीता नहीं जा सकेगा।
8: अंगद, सुग्रीव आदि बंधुओं, तुम सब लक्ष्मण के साथ जाओ और उसका ये यज्ञ विध्वंस करो। और लक्ष्मण, तुम्हें उसे युद्ध में मारना। देवताओं को भय से संत्रस्त देखकर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। अपने बल और बुद्धि से इस भांति उस निशाचर को मारना जिससे वह क्षीण होकर मर जाए। हे जांबवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों लक्ष्मण के समीप सेना सहित रहना।
9: मैं प्रतिज्ञा करता हूं, ज्यों ते ही आज बधे बिनु आवो तो रघुपति सेवक न कहावो। ज्यों सत्संग कर हिसाई तदपि हतो रघुबीर दुहाई।

0: पापी को मैंने बहुत खेल खिलाया, अब इसे मारूंगा। जय श्री राम।
1: लक्ष्मण कहाँ है? राम राम कहाँ है?
2: तेरी माता धन्य है मेघनाथ, धन्य है। तेरी मुख से मरते समय राम का नाम तो निकला।
3: जब रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ का वध सुना तो वो मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी अपनी छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी। नगर के लोग व्याकुल होकर सोचने लगे और सभी रावण को अपशब्द कहने लगे। रावण ने सब स्त्रियों को समझाया कि समस्त संसार नाशवान है, किंतु स्वयं रावण पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरही ते नर न घनेरे। रात बीतने पर सवेरा हुआ और रींच तथा वानर फिर चारों द्वारों पर इकट्ठे हो गए।
4: सुनो, तुम रीछ और वानरों के झुंडों को मत हल डालो, मैं दोनों राजकुमार भाइयों से लड़ूंगा।
5: नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, कहीं भी जीता वीर भलवाना।
6: सखा सुनो, जिस रथ से विजय होती है वो दूसरा ही है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित खोरे, क्षमा कृपा समता रजु चोरे। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतों रिपुताके। मित्र जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्गम शत्रु को भी जीत सकता है।
5: हे कृपाल, हे सुख निधान, इसी बहाने आपने मुझे महान उपदेश दिया। प्रभु मैं धन्य हुआ। प्रभु

0: दशकंदर संभल, अब तेरी मृत्यु समीप आ गई है।
1: जीते हु जे भट संजुग माही, सुनता पस मैं तिन समनाही। रावण नाम जगत ज सजाना, लोक बजा के बंदी खाना। खरदूषण विराद तुम हमारा, बदिर व्याद बाल बिचारा। निश्चर निकर सुबट संघारे हु, कुंभकर्ण घन नाद है मारे हु। आज बैर सब ले निबाही।
2: जो रण भूप भाजी नहीं जाही, आज करहु खलु काल हवाले, परे कठिन रावण के पाले।

0: बड़ा विकराल युद्ध हुआ। श्री राम जी ने बार बार रावण के सिर और भुजाओं को काटा और वे बार बार उगाए। आकाश में सिर और बाहु जैसे छा गए, मानो असंख्य केतु और राहु हूं। हनुमान, विभीषण आदि सभी के साथ युद्ध करते हुए रावण ने अपार शक्ति और माया का प्रदर्शन किया। वानर सेना का विध्वंस देखकर जांबवान ने रावण की छाती में लात मारी। इससे रावण व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ा, उसे मूर्छा आ गई। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में उठाकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। इधर तो ये सब हो रहा था, उधर उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें ये सब कथा सुनाई।
1: हो यही कहा कह से किन माता के विधि मरे ही पे सुदुख दाता। कैसे आश्चर्य की बात है कि रघुपति सर सिर कटे हूँ न मरई, पिथ विपरीत चरित सब करही। मोर अभाग्य जियावत ओही, चेहे हूँ हरिपद कमल बिछोही।
2: धीरज रखो राजकुमारी, मुझे पूरा भरोसा है कि हृदय में वाण लगते ही देवताओं का शत्रु मारा जाएगा। देखिए, प्रभु ताते उर हतई नते ही, एही के हृदय बसती बाय देही। सुंदरी, संदेह मत करो। सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर हो ही विकल, छुटी जा ही तब ध्यान। तब रावण ही हृदय महु, मरे ही राम सुजान। चिंता मत करो, सब प्रकार तुम्हारा कल्याण ही होगा। अच्छा, देर हो रही है, मैं चलूं।
1: अरे दुष्ट चंद्रमा, तुझे शीतल कौन कहता है? तू तो बहुत ही दुखदाई है, और ये रात भी तो नहीं बीत जाती। हाय, शुग संभय सिरा दिन राती। अरे इस समय ये मेरा बायां नेत्र और बाहु कैसे फड़क उठे? क्या ये शुभ शकुन इस बात की सूचना है कि कृपालु श्रीराम जी से शीघ्र ही भेंट होगी? प्राणनाथ स्वामी।
0: आधी रात को रावण मूर्छा से जागा। उसने सारथी को धिक्कारा। सवेरा होते ही वो रथ पर चढ़कर फिर युद्ध भूमि में आ पहुंचा। फिर बड़ा भयानक युद्ध हुआ। श्री राम जी के बाणों से रावण के शरीर से रुधिर की धारा बह चली। स्रवत रुधिर धायौ बलवाना, प्रभु पुनि कृत धनुसर संधाना। 30 तीर रघुबीर पवारे, भुजन समेत सीस मही पारे। काटते ही पुनि भये नवीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहुबार बाहु सिर हये, कटत झटत पुनि नूतन भये। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। काटे सिर भुज बार बहु, मरतन भट लंकेश। प्रभु क्रीडत सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देख कलेश।
3: शत्रु को जीवित देख देवता सिद्ध और मुनि व्याकुल हो रहे हैं प्रभु।
4: क्या तुम भी भयभीत हो विभीषण?
3: हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, रावण के नाभि कुंड में अमृत का वास है। प्रभु, रावण उसी के बल पर जीवित है।
5: कहा राम, कहा राम रणहतो पुचारी।
6: श्री रामचंद्र महाराज की
0: श्री राम जी के बाणों ने रावण की भुजाएं और सिर मंदोदरी के सामने लाकर गिरा दिए। पति का शीश देखते ही मंदोदरी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी।

0: अन्य स्त्रियां रोती हुई दौड़ी। वे मंदोदरी को उठाकर रावण के शव के पास ले गईं।
1: शेष कमठ सही सकही न भारा सोतन भूमि परे परिचारा स्वामी विदाता की समस्त सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोगों के स्वामी सदैव डरते हुए तुम्हें मस्तक नवाते थे। अब तुम्हारे सिर और भुजदंड गीदड़ों का भोजन बनेंगे। तुम श्री राम से विमुख रहे। ये तो होना ही था। काल के वशीभूत होने के कारण तुमने मेरा भी कहना नहीं माना और चराचर के स्वामी श्री राम को तुमने सामान्य मनुष्य समझा। हे स्वामी, तुम्हारा ये शरीर जन्म से ही दूसरों से त्रोह करने पर तत्पर रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ।
0: घर की सभी स्त्रियों को रोती हुई देखकर अत्यंत दुख से विभीषण उनके पास गए। भाई रावण की दशा देखकर वे बहुत दुखी हुए। प्रभु राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने विभीषण को धैर्य दिया। प्रभु राम की आज्ञा मानकर देश काल के अनुसार विभीषण ने रावण की सब क्रियाएं की और मंदोदरी आदि स्त्रियों ने रावण को तिलांजलि दी। वे सब मन ही मन प्रभु राम के गुणों का वर्णन करते हुए महलों में चली गईं। तदनंतर श्री राम के आदेशानुसार लक्ष्मण जी, वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जांबवान और हनुमान ने नगर में जाकर विभीषण को सादर सिंहासन पर बैठाकर उनका राज तिलक किया और रीत के अनुसार उनकी स्तुति की। विभीषण का राज तिलक होने के उपरांत सभी वानर विभीषण सहित प्रभु राम के पास आए और श्री राम ने प्रिय वचन कहकर सभी को सुखी किया।

मुरली बालकृष्ण की सबसे प्यारी सखी, जिसे मुरलीधर एक पल भी अपने से अलग नहीं कर पाते। गोपियां और स्वयं राधा भी मुरली से जलन महसूस करती। गोविंद के लिए बावरी हुई हर गोपी का स्वप्न था कि कान्हा उसे बांसुरी

एक दिन नटखट नंदलाला गोपाला माखन चोरी की लीला करते हुए मटकी तोड़कर माखन खाते हुए पकड़े जाते हैं और माता यशोदा के सामने लाए जाते हैं। महाकवि सूरदास जी के शब्द में सुनिए।

कन्हैया मुस्कुराकर बोले, हाँ मैया, मैंने ही माखन खाया। ऐसी बातें सुनकर माँ यशोदा कहती है कि अपने घर में क्या कमी है जो तू दूसरों के घर में जाकर माखन चुराता है। दूसरों की मटकी तोड़ने की तुझे क्या आवश्यकता। भगवान मैया को मटकी और माखन का रहस्य कैसे

यशोदा मैया आश्चर्य से उन्हें देखने लगती और कहती हैं, कन्हैया क्या तू सच बोल रहा है? कृष्ण कहते हैं, हाँ मैया, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ ग्वाल बाल के रूप में कई देवता भी थे। माँ तू तो बड़ी भोली है ना, तू उन्हें पहचान भी ना सकी, मैं तुझे

ಬರುವಾಯು ಅಂತರ ತೀರು ಕಗನ ಬರುವಾಯು ಅಪನೀ

युग पुरुष संत शिरोमणि कबीर दास जी ने कहा है, हम एक से ही अनेक हुए हैं और फिर एक ही हो जाएंगे। और जब हम सभी उस एक परमात्मा को जान लेंगे, तब हम सब भी उस एक में ही मिल जाएंगे।

और इस संसार सागर से तारने वाले सिर्फ एक है, सद्गुरु साहिब। जो ये सत्य जान जाते हैं वे भवसागर से तर जाते हैं।

जासुकों मुनि वर रटे सुर नर करें विलाप सो सुख सहजे पाइए सदगुरु संग दिया। एक जीव है एक नाम है एक है साहिब प्यार।

साहिब तेरी साहिबी घट घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। एक माता

मन मक्का दिल दुहारी का काया काशी जान दस द्वारे का तेहरा तामे ज्योति पिछान ईश्वर अंश जीव अविनाशी इसी में काबा इसी में काशी।

कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम जो गुप्त है बिरला जानी कोई, साधक साधे साध न पावे।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।